ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026, सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने

0: और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत ही धर्म तप और योग है, सत ही सनातन ब्रह्म है, सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। ये था आज का चिंतन और अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते चलें। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ सुनिएगा। आज सुनिए भाग 238। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूबदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। 7:00 गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार सुनिएगा और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी सुनिएगा। लेखक है मिलिंद सबनीस और प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 8:00 राजकुमार पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और आज रात 9:30 पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। इसके पहले 12:00 सुनिए हिंदी में समाचार। दिन में 1:00 सुनिए सुरीला सफर। 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष 35वीं कड़ी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:00 समाचार का वक्त है 2:15 से और 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3:00 हेलो सहेली कार्यक्रम होगा और 4:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी सुनिए सुनहरी पूछ वाला अमर पंछी। लेखक है मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का है। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा और 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिएगा। 7:00 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर अनमोल यादें गुलदस्ता सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 8:00 हवा महल में सुनिए प्रहसन पड़ोसी का कैमरा। लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव और निर्देशक हैं भगवान साहू। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 सुनिए

कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था झरोका, आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का।

सिंहासन पर श्री राम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम तम संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ। हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम संगीत सरिता की इस तीसरी कड़ी में फिर उपस्थित हैं और पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी, नमस्कार। रोनू दा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की बांसुरी की और अपने गुरु जी के बारे में बताइए, तालीम के बारे में।
2: हाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे, गुरु इति ज्ञान। तो ये एक बड़ी अजीब सी शुरुआत है। मैं बचपन में वैसे तो बहुत शांत था, माता जी बोलती थी कि सबसे शांत भाइयों में यही था, मगर एक गलती मुझसे ऐसी हो गई
1: जी,
2: वहीं से मैं बांसुरी बजाने लगा। वाराणसी में मेरा जन्म हुआ
1: जी जी,
2: 1963 में। तो जब मैं 6 साल का था तो हम लोग सारनाथ करके एक जगह है, वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ है
1: जी,
2: और बड़ी आध्यात्मिक जगह है। वहां पे पिताजी पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे
1: जी,
2: और पन्ना बाबू की उन्होंने सेवा भी बहुत की, और पिताजी बहुत बड़े पेंटर थे मगर शौकिया बांसुरी बजाते थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत बड़े थे।
1: अच्छा
2: जी। तो वो जो बांसुरियां हम लोग अभी बहुत संभाल के रखते थे, उस जमाने में कोई बस खाट पे पड़े हुए थे, तो मैंने 5-6 बांसुरियां, कोई खिलौना तो था नहीं मेरे पास, तो बांसुरियों से खेलते खेलते मैंने 5-6 बांसुरियां तोड़ डाली बस। तो शाम को आके लाल पीले हो गए एकदम वो। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं, तेरी मार मुझे पड़ेगी आज की। मैं तैयार हो गया सजा पाने के लिए, मगर कोई सजा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी बांसुरियां तुमने तोड़ी है उतने ही घंटे रोज रियाज करना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है। और मैं था बड़ा ईमानदार बचपन से, मैं झूठ कभी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता हूँ अगर मजबूरी ना हो तो। तो कहते हैं ना, सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, एक झूठ के लिए यहाँ 100 झूठ बोलना पड़ता है।
1: सही बात है।
2: सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो। तो ये लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं कविता भी लिखता हूँ। तो वो जो मैं पिताजी से सीखने लगा और 6-6 घंटे रियाज करने लगा, तो मैं बांसुरी वादक ही बन गया। उसके बाद 1973 में हम लोग बम्बई आ गए। बम्बई आने का कारण कुछ बनारस छोड़ना था ऐसा नहीं, होम्योपैथिक का इतना डिमांड बनारस में था नहीं, तो यहाँ डॉक्टर मुखर्जी थे
1: जी,
2: वो पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने बम्बई बुलवा लिया। बम्बई आने के बाद हम लोग ऐसे आदमी से मिले जो कोई सोच नहीं सकता कि मैं उनको मिला हूँ। मेरे उम्र के शायद ही कोई होंगे जो उनसे मिले होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु को भी कई मतलब 30-35 साल हो गए
1: जी जी।
2: उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, तान सम्राट। अब वो तान सम्राट कोई पद्मश्री पद्म भूषण नहीं है, तान सम्राट ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि इनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। सारे उस्ताद चौबारे में बैठते थे।

0: और उनकी महफिल लगती थी, उसमें एक एक करके सब गाते थे और उसके बाद एक दूसरे को एक एक नाम देते थे। अरे ये तो धीरधर का बादशाह है, अरे इसके तो खटके का जवाब नहीं, अरे इसके तो साह लगाने का अंदाज अलग है। तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब तान जब गाए तो सारे अमीर खान साहब और ये लोग सब मिलके बोले अरे ये तो तान का सम्राट है ये।
1: गजब।
0: तो तान सम्राट से मैं मिला, आप सोचिए 74 में 11 साल की मेरी उम्र, और उनकी बंदिश आज तक मुझे याद है
1: जी,
0: जिसको राशिद भाई भी गाते थे
1: जी जी,
0: मगर जो आज भी यूट्यूब में है कोई सुने तो बोले कि ऐसा नहीं गाया कोई
1: जी,
0: मियां की थोड़ी पार करो तुम अब मोरी नैया हजरत निजामुद्दीन औलिया।
1: तो यहाँ पर सुनाएंगे क्या थोड़ी?
0: मैं जरूर सुनाऊंगा
1: जी।

क्योंकि मियाँ की थोड़ी है ना, तो जाते वक्त पंचम नहीं लगेगा, गामा धा नहीं जाने धा बामा धा बामा गा रे सा, ऐसा इसका चलन है। एक बदलाव मैंने इसमें किया है, खास साहब गाते थे खाली से शुरू करते थे, मैं पार उसको मैं सम से लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उसमें सम दिखता है, तो मेरी जो रिकॉर्डिंग मियाँ की थोड़ी की सीडी है उसमें मैंने सम से लिया है।

0: उसको गाना भी इतना मुश्किल है
1: जी।
0: तो गंज शखर के लाड लडैया में उन्होंने जो एक तान ली, तब से मुझे तीन प्रकार के तान वो गाते थे, वो जो मुझे याद है, एक तलवार कट तान, एक जिलेबी तान जिसमें बहुत हसीन थे देखने में
1: जी।
0: उनकी तस्वीर भी पिताजी ने बनाई, क्योंकि पिताजी ने कहा कि इतना सुंदर गायक मैंने तो नहीं देखा
1: जी जी।
0: और मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते थे
1: जी।
0: लता जी ने उनका गाना सुनना चाहती थी, तो लता जी ने उस जमाने में 500 रुपए एडवांस दिए थे।
1: गजब।
0: वो एडवांस लेके खान साहब चले गए दिल्ली।
1: अच्छा।
0: प्रोग्राम गाया ही नहीं।
1: अच्छा।
0: और पिताजी से कहा कि वहां पे किसी का डेथ हो गया है।
1: हाँ।
0: आप, मैं जा रहा हूं, मैं गाऊंगा नहीं।
1: हाँ।
0: आप अपने बच्चों को लेके लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले के वहां चले जाइए, उनके जैसा गुणी कोई नहीं है आज
1: जी जी।
0: मैं भी नहीं, मैं तो गा लेता हूँ।
1: हाँ।
0: वो जानते भी है। लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी के वहां हम लोग बाबा भगवान दास जी के आश्रम में माटुंगा में, उन बाबा के वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात का
1: कोई भेद नहीं,
0: कोई भेद ही नहीं,
1: बिल्कुल
0: बस संगीत ही संगीत उनको अच्छा लगता था। लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे हिंदुओं में जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, पहले बाल आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम जिसको, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास
1: जी।
0: ये चार आश्रम बताए गए, मतलब चार जीवन के चार पहलू। तो वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया था, घर में नहीं रहते थे, वही बाबा के वहां रहते थे।
1: अच्छा।
0: वहां जाके उनके दर्शन किए, मेरी दीदी उनसे गाना सीखने लगी, मैं भी गाना सीखने लगा। मगर जब भी कोई बंदिश हो मुझे बताए, मैं उस बंदिश को गाता भी था और बांसुरी में और अच्छा मैं उसको निकालता था।
1: गजब।
0: एक दिन वो पिताजी से बोले कि भानु दादा आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी हैंडराइटिंग देख के लगता है कि इसको फ्रेम में करके दीवार में रख के। तो पिताजी को बोले कि आपका बेटा गाता तो ठीक ठाक है मगर ये बांसुरी वादक बनेगा। तो पिताजी बोले किसके पास ले जाना चाहिए, तो उस जमाने में हरिजी का इतना नाम नहीं हुआ था। 1976 में मैं 13 साल का हो गया। बोले यहीं पे सायन में फिल्म डिवीजन में काम करते हैं पंडित विजय राघव राव, उनसे गुणी बांसुरी वादक कोई नहीं है। गुरु बहुत फेमस होने की जरूरत नहीं है, गुरु ज्ञानी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: वहां पे मैं चला गया और बांसुरी की शिक्षा मेरी होने लगी। वो भी पन्नालाल घोष जी को देख के ही बांसुरी शुरू किए थे
1: जी जी।
0: तो तीव्र मध्यम के लिए एक छोटी उंगली की इस्तेमाल वो भी आवश्यकता वो करते थे। जो हरि जी का टेक्निक है वो तो भोलानाथ जी वाला टेक्निक है, तो उसमें छोटी उंगली की इस्तेमाल नहीं है, वो शहनाई वाली टेक्निक है
1: जी जी।
0: और ये जो मैं बजाता हूँ ये पन्नालाल घोष वाली टेक्निक।

0: जी
1: मेरे गुरुजी ने एक दिन रात नहीं जा रहे थे, घर से निकाल दिया मुझे।
0: अच्छा,
1: बोले अभी ये बजेगा तो ही आना। और मैंने 40 दिन का चिल्ला किया,
0: गजब,
1: बस 40 दिन एक ही आसन में बैठ के 4 घंटे रोज, जिसको 40 का चिल्ला कहते हैं, वो चिल्ला मारा मैंने, अंगुलियां फूल जाती थी तीव्र मध्यम सारी दवा बता नहीं मैं बजा के सुना रहा हूँ।
0: जी, जी, जी।
1: आपको लगेगा कि ये जो कई लोग प्यार से इसको कहानी उंगली भी कहते हैं, उसका स्पीड आप तर्जनी जो है हमारा और मध्यमा जो है उतना स्पीड आपको उसमें दिखाई पड़ेगा।
0: जी जी,
1: देखिए
0: जी, सुनाए सर।
1: सानी दापा मा मैं कानी उंगली से बजा रहा हूं तो उसका स्पीड देखिए।

0: जो यमन राग, राग श्री, ऐसे राग अगर आप छोटी उंगली कानी उंगली का इस्तेमाल लिटिल फिंगर का नहीं कर रहे तो कैसे बजेगा? मैं तो लिमिटेशन मानता हूँ इसको।
1: जी जी जी,
0: जो इसका इस्तेमाल नहीं करते उनके वादन में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है।
1: तो ये जो आपने बजा के दिखाया, अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो बारीकियां पंडित जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं आंखों से, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सचमुच ये बाकायदा कहीं अंकित करने लायक है।
0: मैं गुरु के बारे में एक बात और कहूं, मेरे गुरु जी इतने महान थे मगर वो पहले थे कर्नाटिक म्यूजिशियन।
1: जी,
0: कर्नाटिक फ्लूट बजाते थे और डांसर थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखा वो पंडित रविशंकर जी से सीखा।
1: अच्छा।
0: हालांकि रविशंकर जी के उनकी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फर्क था। 2011 में मेरे गुरुजी गुजर गए, 2012 में रविशंकर जी गुजर गए। रविशंकर जी बड़े गुरुजी मैं बोलता हूं, वो जब मेरे गुरुजी से पूछे कि मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूं एशियाड के लिए, इंदिरा गांधी जी के कहने में अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, इसमें मेरी बांसुरी बजी हुई है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, वो मुझे रानेंद्रपुरा नाम से बोलते थे और रानू बोलते थे।
1: जी जी।
0: उसका दिमाग बड़ा तेज है, उसको ले लीजिए आप इसमें। तो मैं उस गाने में जब बजाया तो मैं ना नोटेशन बहुत फास्ट लिखता था बचपन से, एकदम स्टेनो की तरह, स्टेनोग्राफर जैसे होते हैं।
1: जी जी।
0: तो वो बोले कि विजय, मेरे गुरुजी का नाम लेकर बोले, सो सॉरी मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, ये लड़का मुझे दे दो।
1: अरे गजब।
0: ये लड़का आप मुझे दे दो।
1: हाँ।
0: तो गुरुजी बोले आपका ही है, बोले इसको दिल्ली भेजो। उदय शंकर जी जो रविशंकर जी के बड़े भाई थे,
1: जी, जी,
0: उनके ऊपर मैं एक फेस्टिवल कर रहा, उदय उत्सव। उदय उत्सव में मैं बजाने चला गया। तब से पंडित रविशंकर जी के जितने एल्बम हुए सब मैंने बजाया। फिर उनसे डायरेक्ट भी मैंने कुछ राग सीखे, जैसे परमेश्वरी, तिलक श्याम और राग रसिया।
1: जी।
0: मतलब यहाँ तक कि नट भैरव में क्या सोचना चाहिए, नट भैरव कई लोगों को मालूम भी नहीं कि ये रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है। ये साउथ का एक राग है, सरसांगी।
1: जी जी, जी।
0: नट भैरव ही है वो।
1: जी।
0: उसको रूप दे दिया रवि गुरु जी ने कि ये सादा ने सा रे रे गा मा रे, यहाँ नट है ना।
1: जी जी, जी।
0: सा रे रे गा गा मा पा रे, रे गा मा पा गा मा रे नी रे नी दा, सा को छोड़ के ने सा ने ने, मैं बजा के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसी बात है। ये नट भैरव है।
1: वाह पंडित जी, अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो आज की इस कड़ी को यहीं समेट रहे हैं। अनुमति लेते हैं श्रोताओं से। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मूल्य बिस्तर गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपने खास अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार जी की तमाम फिल्में हैं जिन्हें हम बड़े ही चाव से देखते हैं। आइए अब सुनते हैं ये गाना फिल्म नौशेरवाने आदिल से।

1957 में रिलीज हुई फिल्म नौशेरवान-ए-आदिल, जिसमें सोहराब मोदी के साथ अभिनेता राजकुमार और माला सिन्हा नजर आए। बहुत मशहूर फिल्म। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पंचायत का ये गाना।

0: फिल्म पंचायत का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील नोमानी का कलाम था और इकबाल कुरैशी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: कलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बना

0: सुनाए खास भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

पूरा हुआ अंतराल भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और साथियों के स्वरों में पैगाम फिल्म का ये गाना, प्रदीप के बोल है सी रामचंद्र का संगीत।

मूल्य मिश्र गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं 1961 में रिलीज हुई फिल्म घराना का ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म अर्धांगिनी का गाना। 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ राजकुमार कैप्टन यानी पायलट की भूमिका में नजर आए थे। और इस गीत को जो आप सुनवा रहे हैं, ये लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत वसंत देसाई का है।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे उजाला फिल्म का ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जय किशन की धुन। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनिए हमेरा ही प्यार के।

हर फिल्म का ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे के स्वरों में नीरज के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। आज सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपनी विशिष्ट शैली में बोले गए संवादों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले राजकुमार साहब को याद कर रहे हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं फिल्म हीर रांझा का ये गाना।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

फिल्म ही राजा के ये सभी संवाद काव्यात्मक शैली में लिखे गए थे। 1970 में आई थी ये फिल्म और उन्हें अपने खास अंदाज में बोला, राजा बने सजीले बाने में सजे राजकुमार ने। इस फिल्म में उनके साथ ही प्रिया राजवंश। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: फिल्म बाकीजा का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कैफ भोपाली का कलाम था और गुलाम मोहम्मद का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

हमें राय प्यार के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वक्त का ये गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है रवि ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में आप सुन रहे थे फिल्म हमराही का ये गाना। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत के साथ ही अब आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी
3: बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप आराम करने की जगहें लंगर पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल-पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह
2: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार
4: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा इससे पहले फ्रांस नॉर्वे कनाडा मोरक्को ब्राजील पैराग्वे बेल्जियम अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा यह श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है उधर इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार
2: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना आंध्र प्रदेश के मरकापुरम

0: जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिन्दुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म तुमसे अच्छा कौन है सी। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अच्छा वाला मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू हो चला है तो सबसे पहले अच्छी बात ही कर लेते हैं श्रोताओं। आशा सर्व पुनः सजीवम करोति, यानी कि उम्मीदें फिर से सब कुछ जिंदा कर देती है। होप मेक्स एवरीथिंग कम अलाइव अगेन।
1: बिल्कुल श्रोताओं, इस बात के साथ प्रोग्राम का आगाज तो हो ही चुका है, कार्यक्रम नमस्कार, जिसमें आज के दिन से जुड़ी कुछ खास खास बातों के बारे में हम करेंगे बात और सुनवाएंगे साथ ही बेहतरीन से गीत। लेकिन आपको करवाते हैं पहले हमारी टीम से परिचय। तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर से हैं फारूक अहमद शेख और नरेंद्र सिंह राठौड़।
0: वहीं कंट्रोल रूम से कमान संभाले हुए हैं इंजीनियर सुनील जयपाल।
1: आंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ हैं पौलाश दास।
0: और एफएम पर उद्घोषक हैं निशिका।
1: और श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने।
0: और इन सब के साथ आप ही के जैसे दो रेडियो लवर्स हाजिर है आज, द न्यू न्यू नूतन सोनी और
1: मैं सूफिया खान। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। बातें बहुत सी होगी लेकिन फिलहाल नए नवेले गीत में सुनते हैं प्लेलिस्ट से पहला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।
1: जय हो, शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स। आप सबकी फेवरेट वाणी आकाशवाणी जोधपुर पर शुरू हो चला है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एक मैं और एक तू मूवी का आपने सुना, कर ना चल शुरू तू। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम शुरू कर ही नहीं पाते हैं और हमारी गाड़ी एक शब्द पे आके जुड़ जाती है, रुक जाती है, और वो शब्द होता है काश।
1: बिल्कुल, काश एक ऐसा शब्द है नूतन जिस पे हमारा बस नहीं है, यूं
0: हाँ
1: कहे तो।
0: बिल्कुल,
1: मतलब अगर हमने कुछ किया तो काश, अगर हमने कुछ नहीं किया तो काश।
0: हाँ बिल्कुल। और ये जो जिंदगी में छोटा सा शब्द है ना काश, ये बड़ा ही जो है वास्ट मीनिंग रखता है हमारी लाइफ में। और ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जो अधूरे ड्रीम्स होते हैं और छूटे हुए जो छोटे छोटे अवसर होते हैं और अनकहे जज्बात होते हैं और नई उम्मीदों का आईना भी होता है ये शब्द।
1: बिल्कुल, तो काश ये हो जाता, काश वो हो जाता।
0: हाँ
1: ऐसा हमारे जीवन में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम इस चीज़ को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ से जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे काम से भी जुड़ा होता है, क्योंकि कभी समय की कमी या अपने सपनों की कुर्बानी कहें तो उसमें जो है ये काश शब्द अटक जाता है।
0: अपन सोचते हैं कभी कि काश मैंने अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ा होता, या कुछ और बड़ा सपना देखता, या फिर टाइम पे पेरेंट्स की बात मान ली होती, या कोई फ्रेंड से नाराज न हुआ होता। यानी कि बहुत सारे काश जो है हमारी लाइफ में जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं बढ़ते हैं इस गीत की तरफ।

0: दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में काश शब्द जुड़ जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि आज जो हमारी लाइफ है, इससे इतर हम किसी दूसरे जीवन की कल्पना कर रहे थे कि हाँ, हमें ऐसा जीवन जीना था, या फिर लाइफ में ऐसी आज जो चीज़ें हैं, इससे अलग ऐसी चीज़ें होने चाहिए थी। काश शब्द हमारी जिंदगी में ये फीलिंग लेके आता है।
1: बिल्कुल, और इससे शायद ये भी लग रहा है कि जीवन में जो चल रहा है उससे हम खुश नहीं हैं, ये भी एक
0: बिल्कुल।
1: सवाल उठता है। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं नूतन, जैसे कभी हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, कभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो ये काश शब्द जो है वो उससे जुड़ जाता है।
0: और ये जब काश शब्द आता है ना, तो क्या इसके कह देने भर से हमारी जिंदगी बदल जाती है?
1: बिल्कुल नहीं।
0: कतई नहीं बदलती है। और ये शब्द हमें कहीं ना कहीं हमारी बीती गलतियों का एहसास तो कराता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सिखाता है कि आज जो समय हमारे पास है वो सबसे ज्यादा कीमती है।
1: बिल्कुल, और उसी का उपयोग जो है हमें करना चाहिए।
0: और कहते भी हैं कि बीता हुआ जो समय है वो लौट कर नहीं आता है, लेकिन आने वाला कल आज के फैसलों से ही बनता है।

0: दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाए तो हम पूरा जो है लाइफ का सीन ही चेंज कर दें, यानी कि सब कुछ बहुत बेहतर कर दें। लेकिन जिंदगी में हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है, बस सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं।
1: बिल्कुल, लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं हमें, लेकिन उस मौके का फायदा उठाना आना चाहिए और तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए
0: बिल्कुल। और
1: ताकि
0: कहते भी
1: जो
0: हैं
1: मौका
0: कि
1: है
0: हाँ
1: उसका
0: हाँ
1: हम यूज कर सकें।
0: हाँ उस मौके को भुना सकें, कहने का
1: बिल्कुल,
0: मतलब है। और कहते भी हैं कि वक्त रहते जो कदम बढ़ा लिए जाएं, वक्त रहते जो कदम बढ़ा लिए जाएं, तो जिंदगी में काश के मौके कम हो जाएं।

0: कहते हैं कि अगर खूबसूरत साथ हो आपके साथ तो सफर जो है खूबसूरत हो जाता है, क्यों नूतन?
1: बिल्कुल। और उस सफर को भी संभाल के रखना होता है,
0: बिल्कुल
1: साथी को भी संभाल के रखना होता है, नहीं तो फिर अगेन लाइफ में काश आ ही जाता है, उस शब्द की एंट्री हो ही जाती है, चाहे हम चाहें या फिर ना
0: ना
1: चाहे वो
0: चाहे।
1: शब्द आ ही जाता है। तो ये जो मौका है उसको बिल्कुल भुनाना चाहिए, जो भी मौके मिले आपको। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है किसी दोस्त से बात करनी है, तो दोस्तों आज ही जो है फ़ोन कर दीजिए, और आपको लगता है कि कोई सपना अधूरा रह गया है तो उसको पूरा करने का जो सफ़र है उसकी शुरुआत आज से ही कर दीजिए। और लगे कि किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई गलती हो गई है, तो बस देर मत कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, इससे आप छोटे बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। और हाँ, स्टूडेंट्स अगर उनको लगता है कि आज से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए तो बस शुरू कर
0: कर देनी
1: दीजिए,
0: चाहिए,
1: ताकि
0: उसमें
1: बाद में
0: कंजूसी नहीं करनी चाहिए,
1: कंजूसी
0: क्योंकि
1: ना
0: फिर
1: करें।
0: आपको कहना पड़ेगा काश मैं पढ़ाई कर
1: हाँ,
0: लेता।
1: टाइम पे पढ़ाई कर लेता या
0: बिल्कुल
1: रिवाइज कर लेता, तो बस जो ये शब्द है काश, उसको कम से कम जिंदगी में आने दीजिए।

0: जिस तरह से आज जब हम आ रहे थे तो बादलों को देखकर मेरे मन में ये बात आई नूतन, जैसे हम काश शब्द पे बात कर रहे हैं तो उन बादलों को देख के मुझे ये लग रहा है कि काश आज तो बारिश हो जाए ताकि जो ये जोधपुर में जो गर्मी की तपिश है उससे हमें राहत मिल सके।
1: हाँ, ये हॉट हॉट चीज से जो हमारी ये सन सिटी है, बस थोड़ा सा जो है सूर्यदेव का प्रकोप कम हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर साल

0: 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। श्री शर्मा रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे और ब्यौरा हमारे बालोतरा संवाददाता से।
1: पीएम के दौरे के दौरान करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पासधारी लोगों को ही रिफाइनरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पचपदरा से रिफाइनरी तक साइकिल से विशेष लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने 500 से अधिक साइकिलों की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी वाहन को रिफाइनरी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी आज पचपदरा आ रहे हैं। वे पीएम विजिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं रिफाइनरी के पास एसपीसीएल के नवीन आउटलेट का शुभारंभ भी करेंगे। बंसीलाल, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। विभिन्न प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमत में 6.23% की बढ़ोतरी हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा है कि जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कल जयपुर में सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री दक ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और अपने अनुभव अन्य किसानों के साथ साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों और कॉनफेड के बिक्री केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्वघोषणा प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने झूठी शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने और निर्दोष लोगों को फंसाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए जून महीने में 75 लोगों को अदालत से सजा दिलवाई है। वहीं 1870 मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने बताया कि झूठी शिकायतों के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत में ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस अवधि में नागौर जिले में सबसे ज्यादा 292 मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जबकि जयपुर ग्रामीण और अलवर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR

0: न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए की गई सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में सवाई माधोपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि अप्रैल और मई 2026 के दौरान जिले की 1584 नवजात बालिकाओं के खातों में 39,60,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले ने योजना के तहत 98% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।
1: हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी होती है, प्राइवेट जो हमसे जुड़े हुए हैं SGSY, गंगापुर सिटी में, उनमें जो डिलीवरी होती है उसका हम पर डे एनालिसिस करते हैं, कितनी डिलीवरी हुई है, उसमें से कितनी बच्चियां पैदा हुई, कितनों का भुगतान हो गया, कितना नहीं हुआ है। वो डेटा हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल का 5, 7, 10, 20 से ज्यादा का नहीं होता। मेजर जो गैप है हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी मुंडेरा है, भंडार है, जहाँ हमारी ज्यादा डिलीवरी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल वहां से निकल गया। फिर हम उसका सब सेंटर वाइज बाइपरटेशन करते हैं, किस सब सेंटर की ये डिलीवरी, दस्तावेजों के अभाव की वजह से किसी का भुगतान होता है तो वो दस्तावेज हम उपलब्ध कराते हैं।
0: प्रदेश के अधिकांश दक्षिण पूर्वी इलाके मॉनसून की बारिश से भीगे हैं। कल मॉनसून के प्रवेश के साथ ही चौमासे की बेहतर शुरुआत हुई। कई स्थानों पर झमाझम मेघ बरसा। राजधानी जयपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी है। डूंगरपुर में सुबह से ही बरसात हो रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर और गुलापुरा क्षेत्र में झमाझम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज बारां, कोटा और झालावाड़ के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट बताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है।
2: आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तो श्रोताओं, हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और अब जानते हैं कि इतिहास में 3 जुलाई यानी आज का दिन क्यों है खास। तो श्रोताओं, आज ही के दिन साल 1661 की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल ने आज ही के दिन बॉम्बे यानी मुंबई को ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में दिया था।
0: वहीं बात करें

0: 3 जुलाई 1908 की तो ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था।
1: 1944 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क को नाजी कब्जे से मुक्त कराया गया था, जिसकी याद में आज बेलारूस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
0: जुलाई 1962 का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन श्रोताओं, अल्जीरिया ने फ्रांस से 132 वर्षों की गुलामी के बाद पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी।
1: और 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन।
0: बात करें 2000 की तो लाइसेरिया करासे फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे।
1: साल 2004 आज ही का दिन रूस की मारिया शारोपोवा महिला विंबलडन चैंपियन बनी थी।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन जो है वो स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। 2005 में महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था।
1: साल 2006 में कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी आज ही के दिन।

0: श्रोताओं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हमारा सेगमेंट होता है शुक्रवार की किताब। और आज जिस किताब की हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उस किताब का टाइटल है देवी चौधरानी, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिनका जन्म 1838 में एक बंगाली परिवार में हुआ था और बंगाली भाषा के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि। बंकिम चंद्र ने भारतीय मानवीय मूल्यों को विशिष्ट रूप से चित्रित किया है, ये इनकी खास बात है श्रोताओं। और इसी के साथ साथ धर्म, समाज, जाति और राजनीति के कई मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। खूबसूरती से रचित बंकिम चंद्र की रचनाएं उनकी रचनाओं के माध्यम से भारतीय मध्यम वर्ग की स्थितियों को दर्शाती है। इस तरह के क्लासिक्स ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से प्रेरणा का काम किया है श्रोताओं। और बात करें इस उपन्यास की, तो उपन्यास एक गरीब लड़की प्रफुल्ला की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी एक बड़े ही खुशहाल परिवार में होती है श्रोताओं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण उसे घर से निकाल दिया जाता है। कहानी आगे उसके जीवन के होने वाले विभिन्न संघर्षों को चित्रित करती है। कहानी अपनी मजबूत महिला भावनाओं और एक महिला की अखंडता की प्रामाणिक नक्काशी के लिए आज भी प्रसिद्ध है श्रोताओं।
1: बिल्कुल, जैसा कि नूतन ने बताया, ये कहानी जो है वो प्रफुल्ल नाम की एक गरीब लड़की की है और संघर्षों भरी उसकी ज़िंदगी होती है। और इस संघर्षों भरी ज़िंदगी में प्रफुल्ल की मुलाकात जो है भवानी पाठक नाम की एक साधु डाकू से होती है। वो उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं और उसे गणित, विज्ञान, साहित्य और युद्ध कला में शिक्षित करते हैं। और जब बड़ी होकर प्रफुल्ल देवी चौधरानी के नाम से जानी जाती है और वो अमीरों से धन लूटकर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटती हैं, और वो और उसके जो साथी होते हैं वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ लड़ते हैं। तो श्रोताओं, ये जो उपन्यास है वो देशभक्ति और अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना सिखाता है। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने के कारण एक बार इसको प्रतिबंधित भी किया गया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद इस उपन्यास से जो है ये प्रतिबंध हटा भी लिया गया था। तो इस किताब का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपनी पारंपरिक भारतीय संस्कृति के रास्ते पर चलना सिखाना है।
0: तो उपन्यास से हमें यह पता चलता है श्रोताओं कि स्वतंत्रता संघर्ष को एक महिला जो नायिका है प्रफुल्ला, वो उसके नेतृत्व में देखा गया, और वह भी ऐसे समय में जब ज्यादातर महिलाएं पर्दे

के पीछे रहती थी और अपने परिवार के बाहर पुरुषों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी। यह उन असंख्य महिलाओं के लिए एक महान प्रेरणा थी जो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आई और आने वाले दशकों में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुई थी।

0: तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं काम की बात। तो काम की बात ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है, और जब 40 की उम्र के बाद की बात की जाए तो हड्डियों में वीकनेस जो है एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है।
1: सोफिया, इससे पहले लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी उम्र वाकई बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है और बोन डेंसिटी घटने लगती है, तो खराब लाइफस्टाइल, विटामिन डी की कमी और गलत खान पान इस खतरे को और भी बढ़ा सकता है।
1: और इसके जो शुरुआती संकेतों की बात करें तो जैसे मामूली चोट से भी ज़्यादा दर्द, छोटी चोट से फ्रैक्चर हो जाना और सुबह के टाइम शरीर में जकड़न महसूस होना, दांत या नाखून कमज़ोर होना, ये सारे संकेत आपको मिलने लगते हैं श्रोताओं।
0: और इन लक्षणों का सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है अगर, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट कराना ज़रूरी है, वो है BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। आप करा सकते हैं, इसमें हड्डियों की डेंसिटी जो है वो मापी जाती है। इसके अलावा आप एक्सरे और टेस्ट भी टाइम पर आपको करवाते रहने चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोन हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो बहुत ज़रूरी है।
1: तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो दोस्तों जंक फूड को अवॉइड करना होगा पूरे तरीके से, और रोज सुबह 10-15 मिनट धूप लें। एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, और हो जितना हो सके बैलेंस्ड डाइट लें, और आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो इसके लिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशन आपके शरीर में जो है इनकी कमी ना हो इसके लिए दूध, दही, तिल, हरी सब्जियां और नट्स, सीड्स, दालें इनको ज्यादा लें।
0: ताकि आपकी बोन हेल्थ सही रहे, अच्छी रहे, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तत्व हैं, आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखेंगे और रिपेयर होने में भी मदद करेंगे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।

0: श्रोताओं, आज है 3 जुलाई और आज की खास बात यह है कि आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। बिल्कुल, ये दिन जो है प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति शून्य सहनशीलता को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने और खाद बनाने के महत्व को बढ़ाने के लिए समर्पित है।
1: और ये दिन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये बहुत जरूर भी है सोफिया, क्योंकि प्लास्टिक को विघटित होने में लगभग 500 साल तक का समय लग सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा समय होता है, प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक भी होता है। और यदि ये रिसाइकिल नहीं होता है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को एक तरह से पूरी तरह बिगाड़ ही देता है। और जब ये विघटित नहीं होता है तो मिट्टी और पानी में जमा हो जाते हैं प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं, और प्लास्टिक से पारिस्थितिकी तंत्र और उसके साथ साथ जो समुद्री जीवन होता है, वहाँ जो जीव होते हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है, जो पृथ्वी की रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और जल मार्गों को बाधित कर रही होती है। और इस दिवस को ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट के तहत लगभग 1500 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।
0: और इस दिन का उद्देश्य है लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करने के लिए जागरूक करना। तो श्रोताओं, आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि हम सबको अगर पर्यावरण को है बचाना तो सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए ये दिन जो है उसकी जागरूकता के लिए जो दिन मनाया जा रहा है उसमें योगदान दें।

0: देना चाहिए और प्लास्टिक जो है उसको नो कहना चाहिए।
1: और सबसे बड़ी पहल ये हो सकती है कि जब भी शॉपिंग से के लिए निकलें घर से, तो अपने साथ में जो है वो कपड़े का बैग अपना लेकर जाएं, डिपेंड ना रहें कि शॉपकीपर जो है हमें प्लास्टिक का बैग दे देगा।

0: श्रोताओं, आज जन्मदिन है मुत्तथु गोपाल कृष्णन उन्नेथन का। नाम भी कुछ यूनिक है ना श्रोताओं, इनका काम भी यूनिक है। ये पेशेवर रूप से अडूर गोपाल कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं और मलयालम सिनेमा में काम करने वाले एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। अपनी पहली ही मूवी स्वयंवरम, जो 1972 में रिलीज हुई थी, उसके साथ ही गोपाल कृष्णन ने 1970 के दशक के दौरान मलयालम सिनेमा में एक नई लहर का नेतृत्व किया श्रोताओं। और 5 दशकों से भी ज्यादा की करियर में गोपाल कृष्णन ने 12 फिल्में बनाई। उनकी फिल्में अक्सर केरल के समाज और संस्कृति को दर्शाती है। उनकी लगभग सभी फिल्मों का प्रीमियर जो है वो वेनिस, कान और टोरंटो फिल्म समारोह में हुआ है, बड़ा ही हाईफाई तरीके से। और सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ गोपाल कृष्णन विश्व सिनेमा में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म निर्देशकों में से एक जाने जाते हैं श्रोताओं।
1: और इसी के साथ अपनी फिल्मों के लिए गोपाल कृष्णन ने 16 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जो रे और सेन के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने 17 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। उन्हें 1984 में पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2004 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
0: वहीं 2016 की बात करें तो 2016 में उन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है श्रोताओं।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ उन्होंने 11 फिल्मों और कई वृत्तचित्रों के 35 मिमी प्रिंट भी उनके उपलब्ध हैं।

0: और श्रोताओं, प्रोग्राम में अब जयंती विशेष की बात करते हैं। तो आज जयंती के अवसर पर हम याद कर रहे हैं भारत की एक सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी और लेखिका हंसा जीवराज मेहता जी को। बिल्कुल, पत्रकारिता बात करें हंसा जी की, तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर भी रही, और उन्होंने शिक्षा जगत पर अपनी बेहतरीन छाप जो है वो छोड़ी थी। और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात की जाए तो वो उन 15 महिलाओं में शामिल थी जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा थी। वो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की भी सदस्य थी। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की थी।
1: हंसा 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई श्रोताओं और 1945 से 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने महिला अधिकारों का एक चार्टर प्रस्तावित किया था, जो कि बहुत अच्छा रहा श्रोताओं। बात करें 1947-48 की, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उनके अनुसार सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, या ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि जो कि अमेरिका की तत्कालीन फर्स्ट लेडी एलिनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश था। इसमें पुरुष शब्द को बदलकर मानव शब्द का उपयोग में लाने की कवायद की गई, जिसके बाद ये सभी मानवों को समान बनाया गया है, इस वाक्य का उपयोग किया गया, यानी कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इक्वल। पुरुष शब्द को हटाया गया और पुरुष और महिला के लिए एक शब्द मानव का उपयोग किया गया। इस रूप को, इस वाक्य को जो काफी बढ़ावा मिला, और इससे वे साबित करना चाहती थी कि अधिकार केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी है श्रोताओं, क्योंकि वे भी उतनी ही मानव है जितने पुरुष। अंततः मानवाधिकारों की सर्वभौम घोषणा की भाषा में बदलने में वे सफल रही, और इससे लैंगिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा। हंसा बाद में 1950 में संयुक्त

0: राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष बने, वे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी थी। श्रोताओं,
1: और इसी के साथ श्रोताओं हम याद कर रहे हैं संस्कृत के विद्वान और दर्शन शास्त्री रामचंद्र दत्तादे रानाडे को, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर भी रहे और इसके बाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने। रानाडे जो हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर शोध करना और उनके प्रचार प्रसार करने में उनकी बेहद रुचि थी। आपने सांगली में अध्यात्म विद्या मंदिर की भी स्थापना की थी।

0: और श्रोताओं, जयंती पुण्य तिथि विशेष पर आज हम याद कर रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान, जिन्होंने अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था।
1: और जब उनका नाम सुनाई पड़ता है ना कानों में, तो जो मन है ना वो मतलब अपने आप से ऐसा लगता है नाचने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और कई फिल्मों में, गानों में कोरियोग्राफर के तौर पर उन्होंने काम किया और क्षेत्र में उन्होंने बहुत सफलता हासिल की और 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें।
0: और बात करें श्रोताओं, तो आखिरी बार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कलंक में तबाह हो गए गाने को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था और आज ही के दिन यानी 3 जुलाई 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा।

0: और इसी के साथ श्रोताओं आज याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार को. नाम इनका था कुलभूषण पर फिल्मी दुनिया में राज कपूर के नाम से फेमस रहे.
1: साल 1952 में आई फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को मौका मिला. इसके बाद दिल अपना प्रीत पराई, घराना, गोदान जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए अभिनय की धाक जमाई उन्होंने.

0: और इसी के साथ श्रोताओं आज के नमस्कार कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं रही आपके साथ सूफिया खान
1: और इसके साथ न्यू नूतन सोनी।
0: तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं हम, हाजिर हूं मैं संजय व्यास, मेरे साथ ही प्रोड्यूसर राजेश लामरोड और हमारी होस्ट निशिका। हम सभी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक विशेष मेहमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं इस प्रोग्राम को लेकर। इस प्रोग्राम में हम आपके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और देते हैं, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जोधपुर के जाने माने, बल्कि मैं कहूँगा कि राजस्थान और भारतवर्ष में नेत्र चिकित्सा में जिनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन पुरोहित साहब को। डॉक्टर रतन पुरोहित साहब के बारे में जोधपुर का कोई भी बंदा शायद ही ऐसा होगा जो नहीं जानता हो, लेकिन जोधपुर शहर का विस्तार बहुत हुआ है और हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता जो अब जोधपुर के हो चुके हैं वो थोड़ी सी जिज्ञासा रखते होंगे कि

0: आज के हमारे मेहमान के बारे में हम थोड़ा सा और जानें, और हमारे जो श्रोता हैं वो केवल जोधपुर शहर ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पाली से पोखरण तक हमारे श्रोता हैं और फालना से फलौदी तक भी हमारा प्रोग्राम सुना जाता है। उसके अलावा अगर आप ऐप पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, तो ग्लोबली हमारा प्रोग्राम अवेलेबल रहता है। तो अब हमारे श्रोता जोधपुर की सीमाओं को लांघ चुके हैं और कहीं भी बैठे हमारा इस प्रोग्राम सुन पा रहे हैं। कई बार आपके जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत दूर से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। तो हम आज के हमारे विशेष अतिथि मेहमान का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद संजय जी, और सबको धन्यवाद, आपको और पूरी आकाशवाणी टीम को मुझे बुलाने के लिए।
0: जी बिल्कुल, धन्यवाद। और जो जोधपुर में बरसों से आते जाते रहे हैं और जो लोग जोधपुर के हैं उनके लिए आपका नाम जो है वो परिचय की आवश्यकता नहीं है, और बरसों से लोग जानते हैं कि जालौर गेट की बारी में आप का एक नेत्र चिकित्सालय हुआ करता था, और लोग ये भी जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आपका जो परिवार है वो पायनियर रहा है। मारवाड़ के लोगों की सेवा करने में आपका परिवार अग्रणी रहा है। तो थोड़ा सा सर आपकी जो इस चिकित्सा विज्ञान की पारिवारिक विरासत और थोड़ा सा अपने बारे में हमारे जो नए जुड़े श्रोता हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में।
1: जी हाँ, मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार हुआ है। मेरे पिता IAS ऑफिसर थे और अपने जोधपुर सबसे पहले UIT के सबसे पहले चेयरमैन थे, जो शास्त्री नगर नगरपालिका कॉलोनी बनी। मेरे बड़े भाई, दो बड़े भाई डॉक्टर थे, एक बड़े भाई इंजीनियर, तो शुरू से माहौल डॉक्टरी का ही था। अपने बड़े भाइयों को देखता तो वो डॉक्टर थे और अपने अपने फील्ड में थे, तो मुझे भी डॉक्टर बनना ही था किसी भी तरह से, तो चलो डॉक्टर ही बने। और पहले गायनेकोलॉजिस्ट बनने का इरादा था।
0: अच्छा।
1: मैंने और एक मेरे दोस्त ने गायनी का सोचा था, परंतु माताजी का ऑपरेशन हुआ आंखों का, उसके बाद मुझे इंटर्नशिप के दौरान आई कैंप में पार्ट लेने का मौका मिला, तो वहाँ से आई सर्जरी में इच्छा हुई और मैंने अपना टॉपिक बदल के आई सर्जरी लिए, और अब मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, मैंने अच्छा डिसीजन लिया है।
0: बिल्कुल। और जो लोग आपके पास आते रहे हैं चिकित्सा के लिए उन लोगों को भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंप्स लगाने पड़ते हैं लोगों को, यहाँ मोतियाबिंद की बहुत समस्याएं हैं, तो उनको देखते हुए भी आपका ये निर्णय था, क्योंकि घर परिवार में तो जैसे आपने कहा माता जी को आँख की समस्या हुई थी, उसके अलावा भी आपको ऐसा लगा होगा कि आँखों को लेकर के लोग थोड़े से लापरवाह भी हैं और आँखों की समस्याएँ जो है वो यहाँ जो हो रही है उसका कोई समुचित इलाज पूरी तरह से डॉक्टर नहीं होने के कारण कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता।
1: देखिए संजय जी, जहाँ तक सवाल है सिटी लाइफ का, शहर में तो आजकल अस्पताल अच्छे अच्छे खुल गए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में, परंतु जब हम गांवों में जाते हैं तो वहाँ जो मैंने देखा है हाल बड़ा ख़राब है। दूर दूर तक कोई आँखों का अस्पताल नहीं है, 50-50, 100-100 किलोमीटर तक नहीं, और वहाँ आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ की डेजर्ट कंडीशंस, ड्राई वेदर, आंधी चलना, मिट्टी उड़ना और एग्रीकल्चर, इनके कारण से वहाँ आँखों की बीमारियाँ बहुत होती है और आसपास नज़दीक नहीं है इलाज, तो ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ हद तक अभी कम हुआ है, परंतु अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत है।
0: जी, रेडियो पर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम स्वास्थ्य के बारे में जितनी जागरूकता हो सके उसका प्रसार करें, और आँख हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान ने ये हमें वरदान के रूप में इंसान होने की एक हम कह सकते हैं कि विशेष इनाम के तौर पर हमें ये बख्शा है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो प्राणी होते हैं उनमें आँखें होती तो है लेकिन वो उस तरह से इस खूबसूरत संसार के दर्शन नहीं करवा पाती। कुछ प्राणी ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, कुछ अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन हम पूरी ग्लोरी के साथ इस विश्व को, इस दुनिया को देखते हैं, और हमारे लिए बहुत सामान्य चीज़ होती है जब हम पलकें खोलते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम पलकों के पर्दे को बंद करते हैं तो हमारे सामने हमें लगता है कि कितना महत्वपूर्ण ये अंग है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जितना हम आसान समझते हैं कि हमने इस तोहफे को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि भाई हाँ आँख है तो वो देखने का काम करेगी ही करेगी, लेकिन इसके पीछे कितनी जटिल प्रक्रिया है। आँख जो देखती है वो ऐसा नहीं है कि पलकें खोली और एकदम से सब कुछ साक्षात दर्शन हो गए, बल्कि इसके पीछे पूरा विज्ञान है और एक पूरा चक्र चलता है, पूरी जटिल प्रक्रियाएं चलती है, तब जाकर के देखना संभव हो पाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे

0: में कि जो लोग चाहते हैं कि भाई आंख जो है वो
1: बहुत सही
0: बस
1: आपने वर्णन किया। देखिए आंख तो भगवान ने, हम ईश्वर ने दो कैमरा लगा रखे हैं। आंखों का काम हम जो भी चीज सामने उनको फोकस करना है आंख में, जैसे पुराने जमाने कैमरा होता है तो ऐसे कैमरे लगे हुए, पर तो यहाँ से मैसेज अपने दिमाग के पिछले हिस्से जिसको हम ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स कहते हैं यहाँ जाता है। जब भी कोई चीज़ सामने होती है वो उसका फोटो बनती है आँख के अंदर रेटिना पर, और फिर ऑप्टिक नर्व, रेटिना के सारे फाइबर्स मिलके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, और वो नर्व ट्रांसफर करती है उस सिग्नल को ब्रेन में, और ब्रेन दोनों आँखों की इमेज को फ्यूज करता है और फिर हम देखते हैं।
0: ओके अच्छा।
1: ये एक पूरा जटिल, और इसमें एक सेकंड का मिलियंथ ऑफ पार्ट लगता है, हम इंस्टेंट देखते हैं।
0: इसीलिए हमें लगता है कि ये सारा काम आंखों से ही हो जाता है, उसके पीछे ब्रेन की या उसकी
1: सारा कुछ बड़ा
0: है।
1: अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आंखों से लेके आंख की रेटिना में, नस पे और ब्रेन में, तो देखने में प्रॉब्लम हो जाती है।
0: जिस तरह से डेटा कॉर्ड या डेटा केबल होती है और हम अपने पिक्चर्स को भेजा करते हैं इंटरनेट के जरिए, उसी तरह से इसी तरह की एक नर्व कॉर्ड होती है जो पिक्चर जो बनाती है हमारी दोनों आंखें उनको दिमाग तक भेजती है, और दिमाग फिर एक सीपीयू की तरह संश्लेषण का काम करता है।
1: बिल्कुल, वो एनालाइज करता है दोनों आंखों की इमेज को और उसको फ्यूज करता है।
0: जी
1: तो हम देखते हैं, और इसी दोनों आंखों के कारण से, दोनों आंखों की थोड़ी थोड़ी अलग जगह पे बनी है, डेप्थ परसेप्शन हमें दोनों आंखों को होने के कारण से आता है।
0: जी, जो गहराई का हम अनुभव करते हैं किसी भी चित्र में, इसे हम कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल चित्र हम देखते हैं, वो आंखों की वजह से ही हो पाता है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर आपने बताया, और भगवान का दिया हुआ ये जो अंग है, विशेष तोहफा है, ये हम जाया ना करें अपनी लापरवाही और गलतियों की वजह से। तो उसके लिए कुछ खास करने की हमें आवश्यकता होती है, कुछ विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, कुछ रखरखाव करने की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी आम समस्याएं या दिक्कतें होती है हमारी आंखों में जिनसे समय रहते अगर हम उसको ठीक करें तो आंख हमारा लंबे समय तक साथ दे सकती है। तो क्या क्या सर ऐसी आम दिक्कतें हमारी आंखों में होती है जिन्हें हम समय रहते अगर समझ पाए या तो विशेषज्ञ के पास जा
1: सकें? सबसे पहले मैं बोलूँगा बचपन में,
0: जी
1: बच्चा जब होता है और उसको मालूम नहीं होता पेरेंट्स को इसकी नज़र कैसी है, तो ये आजकल जरूरी कर दिया है कुछ स्कूलों में, स्कूल भर्ती के वक्त दोनों आंखों की नज़र की जांच होनी चाहिए,
0: स्क्रीनिंग हो जाए,
1: स्क्रीनिंग। उस वक्त नज़र कम है बच्चे की, मालूम पड़ जाए तो हम चश्मा लगा दें। कुछ फैमिलीज में लेजी आई होती है, जैसे किसी माता पिता की एक आंख कमज़ोर है, तो बच्चे में भी ये पूरा चांस है, हो सकता है उस वक्त अगर पकड़ में आ जाए, उस वक्त चश्मा लग जाए, उसका इलाज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, लेजी आई भी काम करने लग जाएगी, परंतु देर होने के बाद में वो हमेशा के लिए सुस्त आंख हो जाएगी। तो बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की ज़रूरत, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए रूटीन बचपन में चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है, माता पिता कई बार इग्नोर करते हैं, मालूम भी पड़ जाए बच्चे की नज़र कमज़ोर है, वो इग्नोर कर, अभी बहुत छोटा है, अभी चश्मा नहीं लगा। अरे चश्मा लगाना ही इसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है।
0: माता पिता को ये लगता है कि खाने पीने की अच्छे पोषण से हम आँख को ठीक कर सकते हैं, और चश्मे का मतलब ये है कि बच्चे का खान पान ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी में होती है, वो माँ बाप को ऐसा लगता है कि कहीं ये लगेगा कि बच्चे को खिलाया पिला नहीं होगा बचपन में, इसलिए इसकी आंखें खराब होगी।
1: खाना पीना जरूरी है, अच्छा होना चाहिए, परंतु दृष्टि दोष या रिफ्रेक्टिव एरर
0: और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत या कमजोरी है, इसीलिए नंबर आते हैं। और बच्चों में आंखें कमजोर होने का क्या कारण, ये धारणा ठीक है या नहीं है? रिफ्रेक्टिव एरर का मतलब ये नहीं कि आपकी दृष्टि जो है वो कमजोर है।
1: कमजोर है, कम दिखता है, बिना चश्मे कम दिखता है बच्चे को, ब्लैक बोर्ड पर अक्षर नहीं देख सकता अच्छी तरह, पढ़ाई लिखाई करने में उसको आई स्ट्रेन होता है, हेडेक होता है, वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये कमजोर होती है नज़र।
0: सर कई बार बच्चे का दोष नहीं होता है और उसकी डबल धुनाई भी होती है स्कूल में, जैसे बच्चे को असल प्रॉब्लम तो ये कि दिख नहीं रहा है।
1: हाँ जी,
0: और दिख नहीं रहा है उस वजह से टीचर जो है उसको लगता है कि मेरी जो बताई हुई बात या गणित में मैंने जो समझा रहा हूँ वो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको धकेल दिया जाता है पीछे वाली बेंचों पर। पीछे बेंच पे धकेलने से उसको दिखना और कम हो जाता है, तो उसकी पिटाई होती है, फिर घर पे शिकायत होती है तो घर वाले और धुनाई करते हैं, तो ये बच्चा एक कुचक्र में फंस जाता है।
1: सही है, पर आजकल काफी बच्चे इसीलिए आते हैं, उनके टीचर ने पॉइंट आउट किया कि इसको क्लास में दिखता नहीं है
0: जी,
1: तो टीचर पॉइंट आउट करते हैं और घर वाले लेके आते हैं फिर।
0: बिल्कुल, ये संवेदनशीलता होनी एक टीचर में जो क्लास टीचर होता है उसमें बहुत जरूरी है। और क्लास टीचर जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सभी इस बात की तरफ ध्यान देते होंगे कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो इसका कारण ये हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड पर उसको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए उसके घर परिवार में या स्कूल में जब भी इस तरह के स्क्रीनिंग कैंप हो तब

0: नज़र चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर बच्चे की आँख की समस्या हो सकती है जिसके कारण ब्लैक बोर्ड पर वो देख नहीं पाता।
1: हाँ जी,
0: तो डॉक्टर रतन पुरोहित साहब, प्रोग्राम में कुछ सामान्य आँखों की समस्याएं जो आगे जा करके बड़ा रूप ले सकती है उस पर हम बात करेंगे, हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस प्रोग्राम का जैसा कि स्वरूप है कि हम इस प्रोग्राम में मेहमान की पसंद के कुछ गाने भी सुनवाते हैं हमारे दोस्तों को, तो आपने कुछ गाने हमारे दोस्तों के लिए चुने हैं सर?
1: जी हाँ,
0: जी
1: एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पेल ब्लू डॉट,
0: जी
1: ये सुना होगा इसके बारे में।
0: जी जी
1: ये वो
0: बता।
1: फोटोग्राफ है जो वॉयेजर ने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते तो खींचा था पृथ्वी का,
0: जी
1: एक छोटा सा ब्लू डॉट था। आसपास अथाह तारे हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों तारे हैं, हमारे अंदर ही हमारे यहाँ ही जीवन है, जहाँ तक हमारी नज़र और विचार जाता है जीवन नहीं है, परंतु हम इस ब्लू डॉट को जो बहुत सुंदर है प्रकृति का दिया हुआ, उसको हम खत्म करने पर तुले हैं। हम लड़ते हैं, ये जमीन मेरी है, ये तेल मुझे दे दो, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, उसके बारे में एक छोटा सा गाना है हम दोनों फिल्म का, वो सुना सके आप, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ में आपने इस गाने का जिक्र किया है। और ब्लू डॉट यानी जो नीला ग्रह हमारा है, पानी से भरा हुआ, जो अंतरिक्ष से नीला दिखता है और बहुत दूर से एक छोटे से नीले बिंदु की तरह दिखता है, उसे महफूज रखने की जिम्मेदारी है हमारी। तो इस सुंदर गाने के साथ इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और लौटेंगे। दोस्तों, आपको हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि डॉक्टर रतन पुरोहित साहब, जो जोधपुर के जाने माने वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे अगर आप आंखों की किसी समस्या के बारे में जिज्ञासा करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9413329359 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा अपने मैसेज को और हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके सवाल को। डॉक्टर रतन पुरोहित साहब जवाब देंगे। मिलते हैं इस सुंदर से गाने के बाद।

0: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सेंसिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में आज विशेष अतिथि हैं डॉक्टर रतन पुरोहित, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। और आँखों को महफूज रखने की बात हम कर रहे हैं। आम तौर पर आँखों को भी बहुत ज़्यादा सार संभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कीमती अंग है और इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आज के ज़माने के हिसाब से एक ये भी है कि जो हमारी स्क्रीन का यूज़ है वो बहुत बढ़ गया है, तो उससे भी आँखें जो है उसमें थोड़ा सा हमें सावधानी की आवश्यकता रहती है। और सर, कुछ हमारे लिसनर्स आपको आपसे जिज्ञासाएँ करना चाहते हैं, तो मैं उनके मैसेज पढ़ रहा हूँ। ये लिख रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी हैं और ये पेशे से मैकेनिक हैं, तो इनके चोट लगी है और इन्होंने लिखा है कि 7 अप्रैल 2023 को लगी थी चोट और इलाज इन्होंने जोधपुर में करवाया, उसके बाद अहमदाबाद में भी करवाया, लेकिन अहमदाबाद के जो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो हालांकि इन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं कि आँख के बारे में ही बता रहे होंगे।
1: जी हाँ
0: जी,
1: देखिए ये पेशेवर मैकेनिक हैं तो मशीनों से काम चलता है, शायद हथौड़ा टाकी वगैरह भी हो, मशीन हो जो पार्ट्स मूव करते हो। सबसे बड़ा एक बहुत छोटा सा प्रिकॉशन, अगर बंद वाला चश्मा कोई भी मैकेनिक मशीन पे काम कर रहा है या मशीनरी रूम में घूम रहे हैं या लेबर है जो हथौड़ी टाकी से काम होता है, तो एक बंद वाला चश्मा अगर लगा कर रखें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ उछलता भी है तो चश्मे से लग के नीचे गिर जाएगा। आप काम नहीं भी करो पर घूम रहे हो साथ में देख रहे हो, आपको भी उतनी की उतनी रिस्क है लगने के। खेती में काम करते हैं तो भी ये चश्मा रखें, कांटा वाटा नहीं चुभे। अब आपकी ने जो शिकायत बताई है नहीं हो सकता, शायद उन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया आपकी आंखों के बारे में और इरिपेरेबल इंजरी है, परमानेंट डैमेज हो गया, शायद हो सकता है
0: जी। कोई जैसे चोट ऐसी लगती है जिसमें अंग क्षत विक्षत हो जाए तो गुंजाइश रहती है कि बहुत ज्यादा करने की स्थिति में डॉक्टर्स या विशेषज्ञ नहीं होते, अदरवाइज बहुत सारी चोटें होती हैं जिनमें हम आँख को और रोशनी को महफूज रख सकते हैं, है ना सर?
1: जल्दी आने पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इंजरी नहीं है और जल्दी पहुंच गए तो हो सकता है, कई बार पूरा शत प्रतिशत करीब करीब बचाव भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन संभव नहीं होता है, क्योंकि आँख जितनी हमें बाहर दिखती है उससे 3/4 तो भीतर भी होती
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ,
0: ये अपने आप में एक गोला है और गोले का बहुत सारा हिस्सा भीतर है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो अगर चोट बहुत डीप में लगी है तो शायद हो सकता है, अदरवाइज बहुत सारी गुंजाइशें और उपचार उपलब्ध हैं। और एक हमारे साथी हैं सर, ये घंटाघर से कैलाश जी हैं, कैलाश सोलंकी, और इनके क्या है कि आँखों में जो कॉर्नर है उसके आसपास में कोई ग्रोथ बढ़ गई है, तो इन्होंने इस तरह का फोटो भी भेजा है।
1: जी हाँ, तो ये अपने नॉर्मल लैंग्वेज में नाखूना या हम लोग टेरिजियम कहते हैं।
0: जी जी,
1: इसको ऑपरेशन से हटाना होता है, दवाई से इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन से हटता है और इसकी जगह पर ग्राफ्टिंग की जाती है ताकि वापस बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाए।
0: अच्छा, तो इसको इसके बढ़ने से क्या हमारी दृष्टि भी प्रभावित हो सकती है?
1: अल्टीमेटली जाके नजर में कमी और परमानेंट डैमेज भी कर सकता है।
0: जी, एक बार अगर बढ़ना शुरू होता है हो जाए तो इसकी ग्रोथ होती रहती है।
1: जी हाँ, अक्सर होती रहती है।
0: बिल्कुल, तो इलाज ले सकते हैं। और कैलाश जी, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, श्रोता हैं, वो निरंतर अपनी आंखों को लेकर सचेत हैं सर, और वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। ये लिखते हैं रविराज व्यास जी हैं और लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, 50+ के बाद के आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको, और नहीं करवाने पर क्या क्या आंखों को नुकसान हो सकता है?
1: नियमित जांच तो 40 के बाद भी होनी चाहिए।
0: जी, थोड़ा ज्यादा लेट हो गए हैं ये।
1: 40 के बाद होनी चाहिए। और डायबिटीज़ है तो एक तो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कंट्रोल रहना चाहिए और चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर ये डायबिटीज़ आँख के ऊपर इफेक्ट करने लग गई है तो उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, और नियमित जांच 50 डेफिनेटली, 40 के बाद भी बहुत ज़रूरी है।
0: जी, आँखों की जो सामान्य समस्याएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सर, जो कोमॉर्बिड स्थितियाँ होती है जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं।

0: आंखें भी उनमें से एक है। तो डायबिटीज़ की समस्या चूंकि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और भारत डायबिटीज़ की राजधानी भी कहा जाने लग गया है, तो क्या डायबिटीज़ से हमारी आंखों को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है और क्या हम इसे समय रहते जांच करवा करके और डॉक्टर से मिल करके उनसे परामर्श के द्वारा इसको रोक सकते हैं?
1: निश्चित रूप से, देखिए डायबिटीज़ ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है और ब्लड वेसल्स जहाँ भी शरीर में हैं वो कमज़ोर हो जाता है, लीकिंग मुतासर हो जाता है। आँख और रेटिना, आँख का रेटिना एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जहाँ हम लिविंग स्टेट में ब्लड वेसल को देख सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो जब भी डायबिटीज़ अपने रूप बढ़ाते, ये आगे एडवांस डायबिटीज़ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड है तो और भी ख़राब। ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ द डायबिटीज़, ये दोनों डिपेंड करता है। ड्यूरेशन अपने हाथ में नहीं है, जितनी हमारी लाइफ बढ़ेगी उतना डिजीज़ का ड्यूरेशन बढ़ेगा, और सिवियरिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज, डाइट और ट्रीटमेंट से। तो हम रेटिना में उन ब्लड वेसल्स को देख के अंदाज़ा ला सकते हैं पूरी शरीर में ब्लड वेसल्स का कंडीशन क्या है। रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है, शुरुआत में स्वेलिंग आती है, फिर लिपिड डिपोजिशन होना शुरू होता है, नज़र कम होने लग जाती है और कई बार फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हमें ब्लीडिंग होती है, दिखना बंद हो जाता है और रेटिना खींच जाता है और इनऑपरेबल या अनट्रीटेबल स्टेज में भी पहुंच सकता है अगर हम ध्यान नहीं दें तो।
0: जी,
1: और यही स्थिति आमतौर पर शरीर के दूसरे अंगों में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में डायबिटीज़ के मरीजों में होती है, आँख में हम देख सकते हैं उसको।
0: बिल्कुल। तो सर जो डायबिटीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो यही है डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिना ख़राब होती है?
1: जी हाँ, यही है
0: जी। सर आपने जिक्र किया कि रेटिना जो है उसमें हम ब्लड वेसल्स को लाइव देख सकते हैं। रेटिना आँख का जो पर्दा है,
1: जी हाँ,
0: ये क्या एक जीवित अंग है? जैसे हम लेंस चेंज करवाते हैं या आँख का जो लेंस है वो उतना जीवित शायद नहीं है नाखून की तरह?
1: पूरा जीवित है, हर एक पार्ट जीवित
0: हर
1: है,
0: पार्ट जीवित है।
1: पार्ट
0: अच्छा
1: जीवित है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: तो रेटिना कोई एक कपड़े का पर्दे जैसा नहीं है जिसको हम हटा के दूसरा लगा दें, बल्कि ये पूरी तरह से जीवित
1: नर्व
0: अंग है।
1: फाइबर्स का एक बहुत बड़ा झुंड है और ब्रेन का ही एक पार्ट आंख के अंदर आया हुआ।
0: ओके, अच्छा सर, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कई बार सर पर्दा खिसकना जिसको कहते हैं, आपके पास केसेस आते होंगे,
1: आते हैं
0: तो
1: बहुत कॉमन।
0: रेटिना का खिसकना ये कॉमन है, लेकिन क्या इलाज इसका अनकॉमन है और इलाज इसका मुश्किल है?
1: दो तरह से रेटिना खिसक सकता है।
0: जी
1: एक तो पर्दे में कोई छेद हो जाए, रेटिना छेद हो जाए, ब्रेक हो जाए रेटिना, और फिर जो आंख का पानी है वो रेटिना के पीछे चला जाए तो वो रेटिना खिसक। उसके लिए जरूरी नहीं पेशेंट डायबिटिक हो, या ज़्यादातर मायोपिक्स में हो सकता है ये। दूसरा होता है डायबिटीज जैसी बीमारी जिसमें आँख में बार बार ब्लीडिंग होती रहती है और उस खून को साफ करने के लिए बॉडी लेबर करती है, फाइब्रस टिश्यू बनता है और उस ब्लड के अलोंग जो फाइब्रस टिश्यू बनता है वो रेटिना को खींच लेता है, तो ये भी रेटिना को डिटैच कर सकता है। एक तो होता है छेद के थ्रू डिटैचमेंट होना और एक
0: जी
1: फाइब्रस टिश्यू बनकर रेटिना को खींचता है, ये
0: सर
1: दोनों का इलाज
0: कई बार
1: पॉसिबल है।
0: हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं जो हमारे शरीर की जो एनाटॉमी है उसके बारे में उतना नहीं जानते, वो ये वंडर करते हैं कि जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है वो आंख के पर्दे तक पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि आपके सामने तो आंख का वो हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन पर्दा तो कहीं पीछे होता होगा, तो आप क्या साइड से जाके
1: नहीं,
0: पहुंचते
1: साइड से
0: हैं?
1: नहीं, ऑप्थल्मोस्कोप जो औजार होता है,
0: जी
1: ऑप्थल्मोस्कोप उससे
0: जी
1: देखते हैं, वो लाइट फेंकता है आंख के अंदर और हम लेंस लगा के आगे देखते हैं जो कि रेटिना को दिख जाता है। और अब तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, फंडस कैमराज जिनको कहते हैं, वो रेटिना की फोटो लेते हैं, एडवांस फंडस कैमरा जो करीब करीब 360 डिग्री तक रेटिना का फोटोग्राफ लेते हैं। हाँ, अगर मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया या आँख के अंदर ब्लड भर गया तो कभी कभी रेटिना का एग्जामिनेशन पॉसिबल होता है। ऐसे कंडीशन में सोनोग्राफी से कुछ अंदाजा लगाते हैं।
0: बिल्कुल। और सर 83 से आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं,

0: गए हैं, फंडस कैमरा जिनको कहते हैं, वो रेटिना की फोटो लेते हैं। एडवांस फंडस कैमरा जो करीब करीब 360 डिग्री तक रेटिना का फोटोग्राफ लेते हैं। हाँ, अगर मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया या आँख के अंदर ब्लड भर गया तो कभी कभी रेटिना का एग्जामिनेशन पॉसिबल होता है। ऐसे कंडीशन में सोनोग्राफी से कुछ अंदाजा लगाते हैं।
1: बिल्कुल। और सर, 83 से आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: और अब 2026 चल रहा है।
0: जी हाँ।
1: तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर आपने इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसको एक तरह से साक्षी भाव से और उसमें पार्टिसिपेट करते हुए उस प्रगति का आप हिस्सा बने हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि बिल्कुल लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस हुई है और इसमें जो पिछला सिनेरियो था उससे पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है अब मामला?
0: बहुत बहुत कुछ बहुत
1: जी
0: कुछ। आज जो हम सर्जरी कर रहे हैं वो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, उस जमाने में कुछ जिक्र नहीं था उस सर्जरी का।
1: जी
0: आज
1: जी
0: वो सर्जरी हो रही है और बड़े अच्छे लेवल पे हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इतना चेंज आया है।
1: सर, आप स्वयं सर्जरी करते हैं और आपको लगता है कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ऑपरेशन होता है, तो निरंतर विद्यार्थी बने रहना होता है इसमें, एक्सपर्ट के साथ में एक विद्यार्थी भी बने रहना होता है।
0: हमेशा हमेशा
1: जी
0: आपको पढ़ना होता है, YouTube पे भी देखें और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें और जो लोग कर रहे हैं उनको भी काम देखें। बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी है ये।
1: बिल्कुल। तो 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर रतन पुरोहित साहब से। हम आपके आंखों के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार आपके सवाल आ रहे हैं। अगर जो हमारे दोस्त अभी जुड़े हैं और पूछना चाहते हैं कुछ, उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, तो 9413-29359 पर आप अपने मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सर, अब हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर रतन पुरोहित साहब कौन सा गाना हमें सुनवाने जा रहे हैं। तो
0: कोई जो
1: रफ़ी साहब का जिक्र आपने
0: जी
1: किया
0: हाँ,
1: था गाने
0: रफ़ी
1: का।
0: साहब जैसा सिंगर शायद आज तक नहीं हुआ। मैं
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: सर।
0: फैन हूँ उनका,
1: जी जी
0: उन्हीं का
1: बिल्कुल
0: पसंद का मधुबन में राधिका नाची रे।
1: जी, ज़रूर सुनते हैं हमारे दोस्तों के साथ और लौट के हाजिर होते हैं। आप सबके तमाम जो सवाल हैं उन सबको हम लेंगे और रतन पुरोहित साहब से कुछ और बातें हम करेंगे आँखों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लौट के हाजिर होते हैं।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक दम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में विशेष मेहमान के साथ हम चर्चा कर रहे हैं अपने आंखों के स्वास्थ्य के बारे में, और इस चर्चा में हमें जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर रतन पुरोहित साहब, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ जोधपुर। और हम बात करें उससे, उसके साथ ही आप तमाम लोगों के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। ये साहब हैं रामनिवास बैरवा जी और कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड से, इन्होंने मैसेज भेजा है सर, अपना समस्या बताना चाह रहे हैं। तो ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है। मेरा सवाल है कि मेरे को 2 साल हो गए हैं, मैंने दोनों आँखों में 2-2 इंजेक्शन लगाए थे सूजन के किसी हॉस्पिटल में, परंतु दाई आँख में इंजेक्शन लगाने के बाद ही इन्फेक्शन हो गया, और उसके लिए मैं पूरे जोधपुर में और काफ़ी जयपुर तक इलाज करवा चुका हूँ। मेरे आई फ्लोटर हो गए हैं, एक मक्खी दिन में और एक जाला दिखता है, इसका उपचार क्या हो सकता है? 2 साल होने के बाद भी वो फ्लोटर हट नहीं रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया उन्होंने बिना ओटी ही मेरा इंजेक्शन लगा दिया था, उसके बाद ही ये समस्या हो गई थी। दिन में बार बार दिखने की वजह से मुझे बहुत ये दिक्कत में है, और रात को चमकीली लाइट भी दिखती है सर। ये इन्होंने अपनी दिक्कत बताई है सर।
8: जी हाँ, ये आपने जो बताया इंजेक्शन लगे हैं सूजन के, हाँ सूजन आती है पर्दे में, तो इसका इलाज इंजेक्शन से ही होता है। और ये इंजेक्शन आँख के अंदर रेटिना के सामने जो विट्रियस ह्यूमर जेली जैसा पानी है उसी में लगता है। तो देखिए, जेली जैसा पानी आँख के अंदर टाइटली फिट होता है, आँख के अंदर पूरा फिट होता है। इसमें अगर कुछ भी चीज जाएगी तो विट्रियस ह्यूमर जो जेली जैसा सब्सटेंस है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, वो अलग अलग शेप ले लेगा। तो जैसे आपको फ्लोटर दिख रहे हैं, शायद ये उसी के कारण से दिख रहे हैं। अगर आपके डॉक्टर ने रेटिना पूरा चेक कर लिया होगा, रेटिना में कोई दूसरी खराबी नहीं है, तब तो फ्लोटर की चिंता करने की बात नहीं, बेटर है आप इसको अवॉइड करें। और अगर रेटिना में कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब आपको देखा कि उसका इलाज करेंगे, बट तो खाली फ्लोटर है, बाकी रेटिना हेल्दी है और सूजन अगर ख़त्म हो गई है तो मैं यही कहूँगा आपको इसका अनदेखी करें। फ्लोटर
7: एकदम आप देखें और सामने ही कुछ ऐसा
8: अवॉइड करें, इसका कोई इलाज परमानेंट नहीं है जब तक कि वो दूसरा साथ में पर्दे में और प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड नहीं हो।
7: जी जी। और मदन प्रजापत जी ने जो मैसेज भेजा है वो एक ऑडियो

0: मैसेज भेजा है, तो मदन जी आप लिख करके भेजें, या फिर जब ब्रेक आएगा तब हम आपका ऑडियो मैसेज सुनेंगे और फिर मैं आपका सवाल लूँगा। एक हमारे और साथी हैं, कपिल बोहरा जी हैं, एडवोकेट। ये आपको आपका अभिनंदन करते हुए इन्होंने लिखा है कि आप द्वारा सेवा भाव रखते हुए बहुत सारे फ्री आई कैंप लगाए जाते हैं और आप हमारे जो सोसाइटी है उनके संरक्षक भी हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने आपकी एक और खूबी का जिक्र किया है कि आप बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो सर आखिर में इस प्रोग्राम में जाते जाते आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ गुनगुनाएंगे, ऐसी आपसे गुजारिश रहेगी। और इन्होंने लिखा है कि आजकल बहुत अधिक रूप से आंखें ड्राई होने लगी है, कभी कभी बहुत सूखापन लगता है, इसके लिए क्या उपाय है?
1: धन्यवाद कपिल जी। ड्राई आई के लिए तो एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस जिम्मेदार होती है, ज़्यादा देर कंप्यूटर वर्क जिम्मेवार होता है जिसमें आँख की ब्लिंक रेट कम हो जाती है, या कुछ ऐसी दवाएं जो हम ले रहे हैं, एनर्जेसिक्स हैं, हाइपरटेंशन के लिए लेसिक्स वगैरह और भी दवाएं हैं जो भी ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है। अगर ड्राइनेस है तो लुब्रिकेटिंग दवाएं डाली होती है, एक हद तक तो ये लुब्रिकेटिंग दवाएं काम करती है, और ज़्यादा ड्राइनेस है तो फिर साथ में दूसरी दवाएं होती है जो आंसू का सिक्रेशंस को थोड़ा बढ़ाती है, तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करना होगा। बट अमूमन लुब्रिकेटिंग दवाएं सेफ होती है, इनको आप ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2-3 बार 4 बार डालें, कंप्यूटर वर्क में कंप्यूटर का लेवल थोड़ा ऊपर रखें, रेगुलर ब्लिंक करते रहें, और बाहर जब निकले तो हवा से बचा के रखें, चश्मा प्रोटेक्टिव ग्लास लगा के रखें।
0: जी, रात को जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं और आप सो गए, और सुबह अगर उठते हुए आँखों में ललाई अगर दिखती है, तो इसका मतलब ड्राइनेस की वजह से आपकी आँखों में लाल हुई है?
1: सुबह उसका असर कम होगा क्योंकि रात भर रेस्ट कर चुकी आंखें, ललाई सुबह दिख रही, कोई और कारण हो सकता है।
0: कोई और कारण हो सकता है जी। हमारे तमाम जो दोस्त हैं सर लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं, और आप चाहें तो मैं कुछ सवाल और लूँ सर।
1: हाँ हाँ
0: जी, ये लिखते हैं ट्विंकल चौहान सोजती गेट से, लिखते हैं कि ड्राई आईज की समस्या कितनी गंभीर है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। एक इन्होंने साथ में अभी जो सवाल आया था उसी के साथ का ही सवाल मान सकते हैं।
1: ड्राई आईज
0: अगर इग्नोर
1: गंभीर
0: करें तो
1: सीवियरिटी है
0: जी,
1: माइल्ड है तो कोई बात नहीं, सीवियर है तो बहुत परेशानी होती है डे टू डे एक्टिविटीज में
0: जी,
1: उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है।
0: सर जो ड्राई आई के लिए आपने लुब्रिकेंट्स बताए हैं, तो आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं वही लुब्रिकेंट है?
1: उसका नाम है आर्टिफिशियल टीयर, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग नाम से।
0: ओवर द काउंटर इनको ले सकते हैं या डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए?
1: सलाह से ही लेना चाहिए
0: जी, क्योंकि हो सकता है कोई एलर्जी कर सके
1: जी।
0: और एक हमारे साथी कैलाश आसरी जी हैं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से, ये लिखते हैं कि उम्र इनकी 70 साल है और 15 साल पहले आपके यहाँ से इन्होंने दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था और आज तक कोई समस्या इन्हें नहीं हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। इन्होंने लिखा है कि मेरे बड़े भाई साहब ने बॉम्बे में ऑपरेशन करवाया था, लेकिन वो नियमित रूप से आँखों में दवाई डालते हैं, तो क्या इसी तरह की कोई दवाई इनको भी डालते रहना ज़रूरी है, और क्या अब इनको नियमित जाँच भी करवाते रहना चाहिए?
1: वो दवाई डालना किस लिए डालना ये कह नहीं सकते, बट वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही डालना है।
0: उन्होंने भी मोतियाबिंद का करवाया होगा तो उन्होंने सोचा होगा शायद क्या पता मुझे भी डालनी हो,
1: नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो
0: कहानी
1: नहीं,
0: गया
1: नहीं है तो ठीक है
0: जी, लेकिन आई चेकअप करवाते रहना चाहिए।
1: आई चेकअप जरूरी है,
0: जरूरी है बिल्कुल। और हमारे एक और साथी हैं जो सवाल पूछ रहे हैं अपना, इन्होंने लिखा है कि मदन प्रजापति जी, इन्होंने जो ऑडियो मैसेज भेजा था उसके बाद इन्होंने लिख करके भेजा है सवाल, और ये इन्होंने लिखा है कि आंखों में रेटिना का ऑपरेशन करवाया था, तो उस दिन मेरे आंख में ऑयल डाला था और पर्दे के हिसाब से ऑयल तो निकाल दिया, कुछ बच गया तो ऑयल निकले नहीं, तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है और देखने में उससे क्या दिक्कत हो सकती है?
1: अगर पूरा ऑयल नहीं जानबूझ के नहीं निकाला है तो शायद किसी कारण से नहीं निकाला होगा, और बच गया है तो रेगुलर चेक करा के वापस डॉक्टर से परामर्श कर लें।
0: बिल्कुल, आप तमाम लोगों ने जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम में अपने सवालों के साथ इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से सवाल आपने पूछे और आपकी तरफ से मुझे, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आप सवाल पूछूं, आप और भी अपने सवाल पूछ सकते हैं 9413329359 पर। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन पुरोहित साहब अभी कुछ देर और हमारे साथ रहेंगे, तो फिलहाल एक गाना और सर आपकी पसंद का हो जाए, और आपने मन्ना डे साहब का कोई गाना कहा था, कौन सा गाना आप मन्ना डे साहब का सुनना चाहेंगे?
1: लगा चुनरी में दाग।
0: बिल्कुल, आपके गाने बहुत विशेष तरह के हैं सर, जो गाने बहुत सार्थक हैं और जिनका म्यूजिक थोड़ा सा शास्त्रीय बेस का है, उस तरह के गाने आपको पसंद आते हैं?
1: मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, तो मन्ना डे साहब का ये गाना, और हम उसके बाद इस प्रोग्राम में कुछ देर और आपकी आंखों की

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में आज विशेष अतिथि हैं डॉक्टर रतन पुरोहित, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। और आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में लाइव व्हाट्सएप के जरिए जिस तरह से जुड़े हुए हैं, जिस उत्साह से आप जुड़े हुए हैं, उससे लगता है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते हैं। और एक हमारे साथी अमृत प्रजापत जी पीपाड़ सिटी से फोन मैसेज कर रहे हैं। सर, इन्होंने लिखा है कि आंखों में छोटा सा मांस बढ़ रहा है। 2015 में मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ऑपरेशन का बोला था, अभी तक ऑपरेशन करवाया नहीं और मांस की साइज वही है जो 2015 में थी। अभी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन क्या भविष्य में समस्या हो सकती है?
1: अगर एडवाइस किया है ऑपरेशन करवाने का तो करवा लेना ठीक रहेगा, आगे बढ़ के कोई भी दिक्कत बढ़ने नहीं दें, करवा लें
0: जी। आमतौर पर सर ऑपरेशन करवाने का फैसला जो है मरीज, वो जब तक अत्यावश्यक न हो जाए तब तक लेता नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि 2015 से अभी तक ठीक ही चल रहा है।
1: ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
0: लेकिन अगर बढ़ने लग जाए तो आप
1: छोटा मोटा मांस या टेरिजम जैसे नाखून है
0: जी जी,
1: और आगे दिक्कत नहीं रहा, चल जाएगा कोई, परंतु जांच करवा लें ऑफिस।
0: बिल्कुल। तो इन्होंने एक हमारे और साथी हैं सर, ये

0: नाम नहीं लिखा है इन्होंने। जी हाँ, कमरा राम जी सारण है ये, आडेल बाड़मेर से लिखते हैं। राम राम सा, और आपको नमस्कार किया है। इन्होंने लिखा है, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा कोई सवाल नहीं है, पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाके में, धूल मिट्टी और डस्ट वाले इलाके में आँखों से संबंधित बहुत सी समस्या आती है, तो ऐसे में आप समय समय पर विशेषज्ञों को बुलाकर हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और चूंकि इलाका हमारा डस्टी इलाका है, रेतीला इलाका है, तो इसमें आँखों की समस्याएँ भी हो जाती हैं। तो इन्होंने सर धन्यवाद दिया है कि
1: धन्यवाद
0: आप
1: आपको
0: हमारे
1: भी।
0: काम के लिए आपने डॉक्टर साहब को बुलाया। और अब सर एक और चीज़ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मोतियाबिंद पर हमने बात की, ये बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं, सोसाइटीज़ आगे आती हैं। इसी तरह काला पानी की समस्या भी होती है और आमतौर पर लोग इन दोनों समस्याओं को एक साथ बोलते हैं, मोतियाबिंद काला पानी। उससे ऐसा लगता है कि दोनों बीमारियां जुड़ी हुई हैं। क्या काला पानी बिल्कुल भिन्न प्रकार की बीमारी है और ये आँखों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है?
1: जी हाँ जी हाँ, काला पानी मोतियाबिंद दोनों अलग बीमारी है। काला पानी, काला मोतिया, या जैसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, ये दोनों अलग है। काला पानी इज ए साइलेंट थीफ ऑफ साइट।
0: अच्छा,
1: ये
0: रोशनी
1: धीरे
0: चुराता है
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे।
1: धीरे धीरे नज़र दो तरह से होता है। एक तो क्रोनिक सिंपल लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे, एक होता है एक्यूट ग्लोकोमा। क्रोनिक ग्लोकोमा जो होता है उसमें बहुत धीरे धीरे दोनों आंखों की नज़र कम होती है, और जब चेंजेस बहुत ही धीरे होते हैं तो अमूमन मालूम नहीं पड़ता। एंटी एनलस हम लोग चेक करा रहे होते हैं रेगुलर, तो जब एक आंख की नज़र करीब करीब डैमेज हो चुकी है, दूसरी की एडवांस हो जाए, तब कहीं जाके इंसान को लगता है कुछ नज़र में कमी है, तो फिर वो अस्पताल आते हैं और बाय दैट टाइम ऑलरेडी इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है। तो इस हिसाब से होता क्यों है काला पानी, मतलब आँख का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और कुछ मरीजों में आँख की नस भी कमज़ोर होती है। तो बढ़ा हुआ प्रेशर, या बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ा है परंतु आँख की नस कमज़ोर है, या साथ में बीपी की प्रॉब्लम, बहुत हाई बीपी है या बहुत लो बीपी है, या किसी की कॉर्निया की थिकनेस कम है या पर्दा कमज़ोर है, ऐसे लोगों में ग्लोकोमा ज़्यादा नुकसान करता है। और ये इसकी तो एक जांच होनी होती ही रहती रेगुलर। अगर घर में किसी को भी ग्लोकोमा है तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके बच्चों में ये ग्लोकोमा होने के चांसेस 10 गुना ज़्यादा है, 10 times higher। तो अगर घर में एक भी ग्लोकोमा का मरीज है, काला पानी का मरीज है, तो उसके सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को आंखें चेक करानी चाहिए, ग्लोकोमा रूल आउट करना चाहिए, अगर है तो उसका इलाज होना चाहिए। इलाज आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है, दवाएं बहुत अच्छी आ गई है, लेज़र होता है, और ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन भी होता है।
0: जी, इसमें भी सर अगर कोई डायबिटिक है तो उसको ग्लोकोमा होने
1: ज़्यादा
0: की
1: रिस्क
0: संभावना
1: है
0: ज़्यादा रहती है।
1: ग्लोकोमा में, डायबिटीज़ में और हाइपरटेंशन में ज़्यादा रिस्क है ग्लोकोमा के।
0: जी, आपने कहा कि ये एक ऐसा साइलेंट थीफ है जो हमारी दृष्टि धीरे धीरे चुराता है। तो जैसे हम, कोई मरीज है ग्लोकोमा उसको हो रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी दृष्टि धीरे धीरे चोरी हो रही है? आप मुझे दिख रहे हैं, कोई दूसरा आदमी अगर किसी मरीज को दिख रहा है, तो कैसे दृष्टि की चोरी होती है सर? मतलब लक्षण क्या है जिससे पता लगे कि मेरी दृष्टि थोड़ी सी 5% कम हो गई है?
1: ग्लोकोमा में जो सिंपल ग्लोकोमा है, क्रोनिक सिंपल ग्लोकोमा, उसमें तो अमूमन मालूम नहीं पड़ता, तो बहुत ज़्यादा जागरूक है, अगर बार बार नंबर चेंज हो रहा है, चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, आँखों में भारीपन रह रहा है, या घर में कोई ग्लोकोमा का मरीज है, तो ये एक फीचर हो सकता है कि ग्लोकोमा का, तो जाँच होनी चाहिए। पर जो एक्यूट ग्लोकोमा है, सडन ग्लोकोमा होता है, उसमें सिर दर्द, आँखों में दर्द, उल्टी होना, नज़र का एकदम धुंधलापन आना, और बल्ब के चारों तरफ इंद्रधनुष रंग के जैसे 7 रंग के चक्रे नजर आना, ये एक्यूट ग्लोकोमा के सिम्टम्स है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें तो मरीज जल्दी आ जाता है, परंतु क्रोनिक ग्लोकोमा में अगर रूटीन जांच नहीं होती तो कई बार बहुत लेट हो जाता है।
0: जी, तो इसमें जो इलाज है वो सर दवाइयों से होता है या फिर ऑपरेशन ही करना
1: क्रोनिक
0: पड़ता है?
1: ग्लोकोमा मेनली दवाई से मेंटेन किया जा सकता है, एक्यूट ग्लोकोमा में दवाई प्लस लेजर या फिर सर्जरी।
0: बिल्कुल, तो ग्लोकोमा के बारे में और क्या जानने जैसी चीज है सर, जिसमें जो इलाज पहले होता था और अब जो इलाज और बेहतर हो गया है, क्या परिवर्तन आया है सर इसमें?
1: पहले परिवर्तन दवाएं बहुत अच्छे तरह की दवाएं, बहुत वाइड रेंज की मेडिसिन, आँख आई ड्रॉप्स है
0: जी,
1: जो अच्छी तरह से प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, आँख के अंदर जो पानी की रुकावट है उनको आँख के बाहर निकालना मेडिसिन मेन है, फिर लेजर और सर्जरी भी अब काफी रिफाइंड हो गई है।
0: बिल्कुल, डॉक्टर रतन पुरोहित साहब हमारे साथ में और इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा वक्त और बचा है, अगर आप अपने कोई सवालों के साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो 9413329359 पर सवाल पूछ सकते हैं। और अब इस प्रोग्राम में सर

0: आखिर में एक और गाना आपकी पसंद का हमारे दोस्तों को आप सुनाएंगे।
1: ये आपकी पसंद का
0: जी,
1: सुनाएं।
0: तो जो आर्टिस्ट आपने लिए हैं वो सारे ऐसे हैं जो जिनकी अच्छी ट्रेनिंग या शिक्षा शास्त्रीय संगीत में भी हुई है। तो तलत महमूद साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़ी रेशमी और मखमली आवाज थी उनकी, तो उनका गाना अगर हम आपको सुनवाएं तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो हमारे होस्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तलत महमूद साहब का गाना, और हमारे तमाम दोस्तों के लिए इस प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे थोड़ी सी देर, और हम बात करेंगे आपकी आंखों के बारे में, बहुत सारी ज़रूरी बातें जो हम सामान्य रखरखाव के तौर पर हम अपनी आंखों के लिए कर सकते हैं वो डॉक्टर रतन पुरोहित साहब हमें बताएंगे।

0: दोस्तों फिर से स्वागत आपका 102.1 एफएम रेडियो सनसिटी पर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज विशेष अतिथि डॉक्टर रतन पुरोहित, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। और इस प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है। इस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। ये सवाल हमें पूछा है, इन्होंने लिखा है, आराध्या बोहरा ये पूछ रही हैं कि क्या ऑप्टिक एट्रोपी ठीक हो सकती है क्या? अहमदाबाद के डॉक्टर ने बताया, परंतु पाली के डॉक्टर द्वारा आई ग्लास से ठीक किया जाना क्या संभव है?
1: ऑप्टिक एट्रोफी किस लेवल पर पहुंच गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स एक बार डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, यूजुअली रिकवरी नहीं होती है।
0: जी सर, आम तौर पर हम रोजाना अपनी आंखों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें?
1: एक तो सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए,
0: पानी से धोएं, दो
1: पानी से खुली आंख नहीं धोएं।
0: अच्छा,
1: बंद आंख, खुली आंख से धोना है तो फिर बिस्लेरी या रिवर्स ऑस्मो आरओ वाटर
0: यूज करें। उस तरह का पानी नहीं हो

0: इसमें कोई इन्फेक्शन का
1: जी हाँ जी हाँ
0: जी
1: तो कई बार ओवर है टैंक से पानी से धोने से आंखों में फंगस इन्फेक्शन हमने कई मरीजों का सर देखा है। तो आपको साफ रखें जरूर, बच्चों को खिलौने नुकीले खिलौने वगैरह नहीं दें, एग्रीकल्चर वर्कर मैकेनिक वर्कर चश्मा लगा के रखें जॉब पे और हाइजीन मेंटेन रखें।
0: कोई ऐसी एक्सरसाइज आंखों की होती है जिससे हमें स्क्रीन पर काम करने में मदद मिले, आंखों को थोड़ी सी
1: कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को दूर से नजदीक लाकर थोड़ा फोकस करना, परंतु हर 20-25 मिनट बाद में कंप्यूटर को थोड़ा सा गुड बाय करना 2-3 मिनट के लिए, फिर वापस लगे। स्क्रीन ब्राइट रखें।
0: अच्छा, ब्राइट रखें,
1: स्क्रीन ब्राइट रखें
0: बिल्कुल। तो लेकिन उसकी चौंध आंखों में
1: इतने नहीं हो,
0: इतनी नहीं हो,
1: अच्छा होना, डिम नहीं होनी चाहिए
0: बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे आपका, बहुत धन्यवाद आप इस प्रोग्राम में आए।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली। डॉक्टर रतन पुरोहित साहब, जाने माने जोधपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे साथ थे, और आप तमाम लोग अपने सवालों के साथ थे। तो इस तरह से प्रोग्राम में आप तमाम लोगों के जुड़ने से हमारा ये प्रोग्राम और भी बेहतर हो गया। इस प्रोग्राम से अब हम इजाज़त लेंगे। डॉक्टर रतन पुरोहित साहब का तो शुक्रिया है, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 102.1 FM रेडियो सनसिटी पर अभी मुझे संजय व्यास को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला प्रोग्राम जोधपुर इन्फोटेनिया।

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बीरा मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

दोस्त और होस्ट निशिका बोराणा। स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रोग्राम जोधपुर इन्फोटेनिया में। अगले एक घंटे तक हम करेंगे ढेर सारी बातें, तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर हैं, घर के काम में व्यस्त हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एक घंटे तक आपका साथ निभाएगा आपका प्रोग्राम जोधपुर इन्फोटेनिया। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

क्या आपको पता है, हमारा दिमाग दिन भर में लगभग 70,000 से भी ज़्यादा विचार सोचता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें उनमें से कितने विचारों को अपने साथ रखते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच से हो और अंत एक प्यारी मुस्कान के साथ। क्योंकि खुश रहना आजकल एक आदत जैसा है और अच्छी आदतें हमेशा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: बरसात का मौसम धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। ऐसे मौसम में सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाहर का कटा हुआ फल खाने से बचे और फास्ट फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। पर्याप्त पानी पीजिए और अगर सड़कों पर पानी या फिसलन है तो कृपया अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाएं। आपकी छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।

एक बार फिर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जोधपुर इन्फोटेनिया में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका। एक सवाल आप सभी से, अगर आपको सिर्फ एक दिन बिना मोबाइल के बिताना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?

आपने देखा होगा, पेड़ कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके सारे फल फूल कौन तोड़ ले गया। वो बस हर मौसम में फल फूल देना नहीं छोड़ते। इसी तरह हमें भी अच्छा काम करते रहना चाहिए। माना हमें लगता है मेहनत बेकार जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, पर यकीन मानिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।

क्या आप जानते हैं कि हंसने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे तनाव को, स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। देखिए, मुस्कुराना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसके फायदे अनमोल है, यानी इसे हम बाहर से खरीद नहीं सकते। तो अगर आप भी मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो ज़रा मुस्कुरा दीजिए, शायद आपका दिन और भी अच्छा हो जाए।

इसी के साथ हमारा जोधपुर इन्फोटेनिया प्रोग्राम यहीं होता है समाप्त। आपकी रेडियो दोस्त निशिका को दीजिए अब इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जोधपुर इन्फोटेनिया। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस AI के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, UPI, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना।

0: करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम
0: फिल्म है हीर राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: की उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पे सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिर आए बदरा, सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद है जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है। मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया, लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहां पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक

इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में। हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं, तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं। और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने, तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमजोर तने वाले पेड़ हैं आसपास, तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएं खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे या कोई और गाना आपने सुना था, सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

0: गाना था मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना। और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कने जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहां रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी। चोट

जल्दी से ठीक हो जाया करता था और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निकाल।

हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है अब हमारी सखियों के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: ਟਿਸਾਇਆ ਜਾਵਤਾਂ ਜੋੜਾ ਹੋਇਆ ਅਧੀਰ ਡਾਲ ਡਾਲ ਹਿਵੜੋ ਹੋਇਓ ਚਾਲੀ ਚੀਰਮ ਚੀਰ गणगौर कार्यक्रम सुनने वाली सगली सखियारो स्वागत है आपरे मनमोहने कार्यक्रम गणगौर रे महीने और आज आपरे साथे है आपरी दो सखियां पूनम देवड़ा और
1: ममता राजपुरोहित
0: तो स्वीकार करो माना हेत प्रीत सु भरेड़ा
1: राम राम, राम, राम। सुरा रिजत बात करा तो सुरीलो राजस्थान घबा रिजत बात करा तो रंग रंगीलो राजस्थान खेत खलिहान रिजत बात करा तो हरियाणो राजस्थान और मिनखा रिजत बात करा तो छैल छबीलो राजस्थान ओही तो है अपनो राजस्थान अलबेलो राजस्थान तो अलबेले राजस्थान री अलबेली मायड़ भाषा सु सजोड़ा इन हथई इन कार्यक्रम गणगौर रे मायने सगली हेतल सख्यारो घणे मान स्वागत चालो शुरुआत करा इन मनमोहणे कार्यक्रमों री एक मीठे से गीत सु

0: बिल्कुल ममता जी, अब तो राम जी आई विनती है बस अब गर्मी बहुत होगी, अब तो बस जल्दी से बरसात करा दो
1: ताकि सगला ही जीव सुरा हो जाए।
0: हाँ, क्योंकि मीनक कई जीव जंतु पेड़ पौधा सब गर्मियों तपरिया है
1: बिल्कुल,
0: और सब ना बारिश री बूंदा पड़ने इंतजार है, सब बाढ़ जो जाएगी बस कद बारिश हो, पर पहली बरसात जब ओला नहीं तो थोड़ी सी गर्मी और ज्यादा
1: उमस बढ़ेला, और उमस है भी
0: बहुत ज्यादा उमस है।
1: और
0: पेड़ पौधा वास्ते तो बारिश अपा जाने या कि अमृत रे समान हो, इन मौसम में पेड़ पौधा ने जब बारिश रो पानी मिल जावे तो वे जल्दी सु जड़ा पकड़ लिया करो और बढ़ जाया करे
1: बिल्कुल।
0: और पेड़ पौधा रे पर बात कर रहे हैं तो अपा मना रहे वन महोत्सव सप्ताह
1: बिल्कुल,
0: तो वन महोत्सव सप्ताह मनाने रो उद्देश्य यही है कि इन महीना रे महीना आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाओ ताकि हरियाली है जी को बढ़े।
1: और कारण है कि देखो अषाढ़ महीनो है, यूं देखता जाऊं तो अगर इतक मास नहीं आतो तो और सावन चाल तो, पर अषाढ़ है और मेघ छाट आवनो टाइम तो हो ही गया है, पर हाल ही देखो कि मेघ राजा मेहरबान होया को नहीं, हो जावे तो आजकल में लाग तो रियो है उड़ीक देखता लोगों ने कि हाँ उमस और छाटा हो रहा है, कटी कटी थोड़ा बहुत होया भी है और हो जावे तो और बढ़िया है। और वन महोत्सव भी इन टाइम माने इन खातर ही मनाया करे कि जो आप छोटा छोटा पौधा या बीज आप लगाओ धरती माने तो पे छाट पड़ना हूं बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह उगेला, और जो अपना वन है बिहार मायने सुधारो वेला। इन अलावा आप एक दिन और मना रहे हो पूनम जी आज, क्लीन बीचेस वीक
0: बिल्कुल, अभी हर साल 1-7 जुलाई तक मनाए जावे और इन्हें समुद्र तट रो अर्थ डे भी कहे जाए करे। इन दिन रो मकसद हो ये कि तटीय क्षेत्र मायने जो भी मतलब जो भी समुद्र है वेने साफ रखना, प्लास्टिक और कचरे से समुद्री जीवारी रक्षा करनी और आम जनता ने समुद्री प्रदूषण के बारे में इन्हें शिक्षित करना।
1: इन अवसर पर देखो कि जो अलग अलग एनजीओ वह नी वे कई तरह री जो अभियान है या मुहिम है वे चलाया करे, तो इन मुहिम रे मायने भी आप अगर कोई समुद्र तट नेड़े लोग रेवे दिया है तो इन मुहिम में जुड़ आप रो योगदान दे सके, या पच आप यूं भी कर सको देखो कई एड़ा स्थानीय संगठन है या कई सफाई अभियान एड़ा चल रहा है जकर माने आप रो कोई छोटो मोटो काम काज

0: करना अपने तरफ कहीं कर सको प्रकृति रे वास्ते वातावरण रे वास्ते कुछ भी नहीं होवे या आप उन जगह नहीं रहता हो कि जेटे समुद्र तट है तो और जरूर ध्यान रखनो है एक बात रो संकल्प लेवनो है कि अगर आप भविष्य मायने कठे समुद्र तट पर जाओ तो बिना कारण रो जो कचरो आप फैला रहा हो बिना खातर एक जागरूकता होनी चाहिए और जो करे ब्याने भी रोको और आपने भी नहीं करना है आड़ पाड़े कोई कोई आपने एड़ो डब्बो या कोई कचरे थेलो या पेटी मिली जावे कि जटे आप इंटर कचरे ने डाल सको या अपनी फर्ज भी है और अपनी जिम्मेदारी भी है और देखो तो जरूरत भी है पूनम
1: बिल्कुल
0: जी।
1: सही किया ममता जी और जरूरी नहीं है कि आप देखा कि भाई मैं तो कोनी फेंकियो कचरे तो मैं क्यों उठाऊं एक आम जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आपने बटे जो भी कचरो दिख रहे हो तो अगर कूड़ेदान पड़ी हुए तो बटे आप कूड़ेदान में डाल दो और आप भी घूमन जा रहे हो तो एक एडी थैली या एडो कोई बैग ले जाओ जिनमें आप जो भी आप सामान ले जा रहे हो जो फेंकने लाए गए तो वो उन थैली में डालना आप साथ लिया और एक निश्चित जगह माता आप उन्हें डाल सको
0: और एक साधारण सभ्य नागरिक के लिए जो निशानी है नी सब पहले निशानी आई जाए कि अनावश्यक कोई भी तरह रो कचरो आप जठे भी जा रहे हो उठे नहीं फैलाऊं

0: तो ममता जी जब भी समुद्र रे किनारे नदी रे किनारे तालाब रे किनारे जावा तो ठंडी ठंडी हवा रा जिका लहरा रे साथे झोंका आवे नी कि तो ठंडक रो एहसास देवे
1: और जो गीत बाज जो नी यूं लागे जणा पई समुद्र रे कोई लहरा ले रिया
0: बिल्कुल पर लहरा दो बार दो दिन हो हवा भी बंद हो चुकी
1: बंद होगी
0: क्योंकि हवा बंद हो जदी तो बरसात रे अनुकूल परिस्थितियां बणी है पण और हमारी बात करानी तो इतना दिन तो इतनी हवा चलती है कि हवा रे साथे साथे प्लास्टिक री जी की थैलियां है वे हवा में लहराती लहराती घर रे
1: घर मायने
0: उड़ना आ जाती कटी सड़क रे किनारे कटी पानी में देखो तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर
1: नाले जो की यानी नाले ही रुन जावे
0: बिल्कुल सही कियो और यू देखा नहीं तो किनी किनी तरह हल्की फुल्की जी की थैली है नी अपन रोजमर्रा री जिंदगी रो एक हिस्सो बन गई है
1: बिल्कुल
0: अपन देखा तो ज्यादातर घर मायने कटी कटी प्लास्टिक री थैलिया रो एक गुप्त भंडार है जिको छुपेड़ो है
1: बिल्कुल है
0: पण कदी अपन ओ नहीं सोचियो को कितनी नुकसानदायक है थैलिया
1: बिल्कुल क्योंकि देखो आज आप जो सुविधा नाम माते काम में लेव हो इन चीज ने छोटी सी लागे और खूब सुविधाजनक लागे पर इना जो बाद रा जितना भी कहने की आफत या परेशानी रूप में जो अपने सामने रिजल्ट आ रहा है बे ऐडा है कि आपरो नाक्योड़ो कचरो कई सालों तक धरती रे गर्भ हूँ मिट तो नहीं है बिनो कोई तरह रो निकाल नहीं हो पाता है तो आपरी कोशिश आ रही है चीजें कि कम कम इस्तेमाल करो और अगर हो सके तो पुरानी जो अपनी संस्कृति है थी पूनम जी बिने तरफ एक बार नजर करो तो अपने ध्यान पड़े कि आज जो दुनिया नवा नवा उपाय ढूंढ रही है नी वे तो आपा काम में लेर छोड़ भी चुके हैं चाहे देखो कि कपड़ा रो थेलो है तो या पछे कोई पानी री मशक है थी या कोई भी अड़ी चीज जो लंबे टाइम तक आप काम में ले सकता और बिना हाथों हाथ फेंकनी नहीं पड़ती
0: मतलब कहने का मतलब है कि पहले बिना प्लास्टिक रे भी जीवन हाल तो प्लास्टिक री जरूरत ही को नहीं रहती
1: आपने याद है पूनम जी कि कदे बड़े सफर में आप जाता नहीं तो साथ एक लोटो या गिलास रखता कि अगर किनी नहीं है अड़ी हरदा के आप सुराही या मशक या नहीं है किनी खने तो जटे भी कोई दो चार पांच दस किलोमीटर अंतर में कोई नल ला तो नहीं उठो वो लोटो गिलास भर पी लेता।
0: बिल्कुल सही कियो और आप आज प्लास्टिक की बात इन वास्ते कर रहे हैं क्योंकि आज है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और इनकी शुरुआत एकल उपयोग वाला जिका प्लास्टिक बैग है बिना ने समाप्त करने वैश्विक अभियान रूप रे मायने हुई ही और दिन प्लास्टिक रे पर्यावरण प्रभाव ने मतलब कम करने वास्ते और इन जो विकल्प है उनकी तरफ बढ़ने रे वास्ते जिको मनाया जावे और दिन साल रे मध्य में आवे जो अपने याद दिलावे कि पर्यावरण संरक्षण रे वास्ते प्रयास केवल पृथ्वी दिवस तक ही सीमित को नहीं है और भारत रे मायने विशेष रूप से मानसून चरम पर होया करे इन टाइम
1: जी
0: और इनके कारण जिका प्लास्टिक बैग हुए भी मोटी समस्या बन जाए क्योंकि नदियां रे मायने या जो भी है वे प्लास्टिक हुए जिको पानी ने अवरुद्ध कर देवे तो बाढ़ रहा है जिको आसार ज्यादा बढ़ जाया करे तो कटिन कटे वो बहुत ही नुकसानदायक है अपन वास्ते और अगर अपन स्वच्छ महासागर स्वस्थ वन्य जीव और एक रहने योग्य भविष्य चाहवा तो इन विषय पर अपने गंभीर रूप से चिंतन करना जरूरी है
1: जी बिल्कुल आप पूनम जी बिल्कुल सही बात करिए कि अपना जो जल है जंगल है जमीन और जीव जंतु है बिहार वास्ते खूब बड़ी समस्या बन सामने आ रही है और कई बार देखो कि जो गाय ढांडा है नी अभी कई बार एक कचरे में फेंकड़ी जो थैलियां है बियान खान बीमार हो जावे और कई बार तो ऑपरेशन भी नौबत आवे है
0: बिल्कुल
1: तो एक सलाह एडी है आज क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है तो याद करो कि पुराने टाइम रमायने अपने घर री जो खूंटिया है बटे रंग रंगीला झालरीदार थैला लटक्योड़ा रहता तो हो सके तो बिन आदत ने फिर से वहां पर काम में ले आओ

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए, हरा भरा पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: और बांसू बनी हुई आप टूथब्रश यूज ले सका चम्मच यूज ले सका काटा होगी या प्लेटा होगी सिंगल यूज प्लास्टिक रो एक बहुत ही चोखो विकल्प है
1: बिल्कुल है और देखो कई बार कहीं कि आप जो टबर है उन्हें टिफिन घालते हो नहीं सुबह सुबह वह भी अब एक प्लास्टिक री शीट आवे रैप करने खानो रैप या ढक्कन उन माने अनपैक करन टिफिन दिया करे एल्यूमिनियम फॉइल है वो भी तो ए तो वैसे ही नुकसानदायक है बच्चों रे वास्ते और प्लास्टिक रो यूज तो अपन यूं सब्जी घालन वास्ते या एडे कम में भी नहीं करना चाहिए तो कम कम खानो तो उन माने नहीं लपेटनो चाहिए अपन ने तो एडी जगह भी आप इन प्लास्टिक री जगह कोई सूती कपड़ो या पछे कोई दूजी तरह कोई ढकनो वे नी वो दे प्रो और पछे उन माते आप खानो रख दो या ढक्कन लगा दो तो वो पानी भी नहीं रहेला और खानो भी ताजो रहे और नुकसान भी नहीं करे इन्हें अलावा जो प्लेटा है या गिलास है या आप देखो बाल्टी और मग है पहले टाइम में लोहे री स्टील री आती और सालों साल चलती। घर रोज यूं जाने के हिस्सों बन जाती है तो कई ऐसी चीजें हैं झाड़ू ब्रश भी आप देख लो ए भी प्लास्टिक रे हैंडल रे साथ आवे जबकि पहले टाइम में
0: झाड़ू है गया हैंडल का ही पूरा बना हुआ था भी प्लास्टिक रही हो गया
1: नहीं तो पहले टाइम में कहीं होता कि रस्सी होती जगह वहां पे बांध जो टूटती जो रस्सी पे नई नई नई नई बांधता
0: सही है जब तक वो पूरा नहीं घिस जाता बंद उपयोग बंद नहीं करता
1: बिल्कुल तो छोटी छोटी चीजें हैं जी यार माने आप बदलाव कर प्रो छोटी सी शुरुआत बिल्कुल कर सको

पूनो दीना गाज बिजू बरसंत ना से लच्छन कालरा आनंद मानो सत। मतलब के असारी पूनम ने अगर बादल गरजे बिजली चमके और पानी वरसे तो अकाल रा जो लक्षण है बे मिट जाया करे और पैदावार अच्छी होवे। पर देखो के बार रा जो संकेत है वे आपने मिल नहीं रिया है हाल तक। यहाँ पर जो मेघ राजा है वे मेहरबान होया कोनी, पर अषाढ़ जो महीनो है नी पूनम जी वह अपने

0: पुराने टाइम में मैंने देखो अपना जो दादी सा है या नानी सा है था, वे कई तरह की ऐडी चीजों करता जो हर एक महीना ने अलग बताती कि इन महीना में यूं ब्याह करे, उन महीना में यूं ब्याह करे।
1: ऐडी एक महीना रो अपने आप में अलग ही महत्व हो तो और भी ना जुड़े रीति रिवाज भी होता।
0: बिल्कुल, तो ऐडा ही कुछ एक रिवाज है या कुछ एक संस्कृति है अपनी सभ्यता है। बिने बारे में आप बात करा तो गर्मी और वर्षा ऋतु रे बीच रो जो काल है संधि काल अषाढ़ महीनो, इन मायने जो अपने पुराने टाइम रे बात करो राजस्थान मायने तो जब मेरो आगमन रो महीनो मनीजे है इन टाइम में खेतर मायने देखो तैयारी पहलू करी थी कि भाई छांटा आई तो पहले आप जो हल सब हल जो तैयार करना है या साफ सफाई करनी है खेत री झाड़ जंकर जो उग गया है बियाने हटावना है वो आप कर रखता और फिर बान छांटा हूँ एका छाट पड़ती खेत बाता या हल चलाता बादल री उड़ी कर प्रकृति रो जो बदलाव है और लोक गीतर माने भी रिवाज और माने भी अपने साफ नजर आओ तो अषाढ़ू जुड़े कुछ एक गीत भी है। खेतरी तो बात आप कर ही ली है, कुछ गीता की बात करो तो कुछ एक गीत है जो इन महीने रामायण खास गविस्ता जहाँ की पीपली गीत जो कि शेखावटी रामायण और मारवाड़ रामायण गविजे चौमासो गीत कजली गीत और जो भादवे रो स्वागत है वो इन गीत रामायण आप देख सको हो तो पणिहारी गीत भी एक खूब चावो गीत है जो कि अषाढ़ रामायण लोग गाया करता तो प्रकृति रो जो बदलाव है वो इन गीता रामायण अपनी जो संस्कृति है वह इन गीता रामायण झलकती खेतों की तैयारी होवे या एक गीत होवे ये अपनी सभ्यता है संस्कृति है।
1: बिल्कुल, और इन महीना चौमासा की शुरुआत भी होवे तो कई अपनी जो दादी नानी है वे चौमासो राखे और देखो टाइम माते खानो खानो टाइम माते उठनो बैठनो सोनो और इन महीना में कई तीज त्योहार भी आवे तो दान पुण्य भी करे है वे जुड़ियोड़ा तो आपने जो भी रीति रिवाज है अपनी दादी नानी अच्छी तरीके से निभावे हर महीना रा।
0: बिल्कुल, इन मायने कई तरह रा देखो आप जब त्योहार की बात करिए तो बड़ला नोम जो वह भी आवे है गुप्त नौरता आवे रथ यात्रा भी इन महीना में आवे देवशयनी एकादशी आवेला के जिन बाद में जो भी शुभ काम हो वह सगड़ा ही एक बार रुक जावे
1: चौमासो लाग जाए।
0: हाँ, चौमासो लागे और चौमासो आप ही एक बड़े त्योहार मनीजे है अबे तो कि जितना भी व्रत त्योहार दान पुण्य धर्म जो है वे काम इन महीना रे माने लोग खूब करिया करे तो महिमा खूब है अषाढ़ महीने री। और एक और चीज जो होया करे कि आपारा जो पुराने टाइम री जो पानी रो स्रोत है बियारी साफ सफाई भी आप इन टाइम में करिया करता पहले
1: कुआ नदिया तालाब टाका जितना भी है क्योंकि बरसात रो पानी आवेला तो वे पाछा भरी जला तो एक बार वेने जो भी कूड़ो कचरो है निकालने वेने साफ सफाई हो जावे
0: ताकि पीवन जो पानी
1: भर सके वेने अंदर। और एक और काम करिया करा एक बनाया करा सीड बॉल यानी बीज रा लाडू इन मौसम में अगर आप सीड बॉल बनाने अटूटी डाल दा तो हरियाली एजी को चारों मेर खिलन लाग जाए।
0: बिल्कुल,
1: और बनानो भी बहुत आसान है। इन रिवाज से आपने की नहीं करना है, काली मिट्टी है चिकनी मिट्टी लेनी है और खाद लेनी है और उनके महीने जो भी आप स्थान है पेड़ पौधा रा बीज है जान खेजड़ी होगी रोइड होगी और नीम है देसी बबूल है ले सको एक कुंडा या परात रे मैंने मिट्टी और खाद ने चौकी तरह मिला लो और मिश्रण में थोड़ा थोड़ा पानी डाल ले एकदम आटो जान गूंथ लो।
0: बिल्कुल,
1: पछ उन्हें छोटा छोटा नींबू जड़ा लाडू बना उन्हें बीज रे मैंने के बीज दबा दो बीज दबाने पाचे मैंने गोल गोल कर लो और जटे भी आपने मतलब लागे के अठे सुखा सका छिया रे मायने बट आप छाया में सुखाओ धूप में सुखाए तो वे तिड़ जावेला दो तीन दिन तक वे बढ़िया सूख जावे पचे जो भी गोचर भूमि है खेत रे किनारे है सड़क रे किनारे है गांव रे किनारे किनारे है बट आप वे बोल जिका बीज लाडू बनाए वे डाल दो और जब भी बरसात आवेला तो विंड्र मायनो बीज अंकुरित होने पौधो बन जावेला।
0: खूब बढ़िया बात है और देखो कि छोटो सो प्रयास है छोटी सी कोशिश है मायने घणो अपने कहने के कोई काम भी इतना बड़ो करना नहीं है तो बिल्कुल ऐडा छोटा छोटा प्रयास अपने जरूर सु करना चाहिए।

0: बिल्कुल, देखो कितनी अरज कर ली इंद्र राजा ने, और अब अगर नहीं बरसे नहीं तो पूरी चूक है बिहारी गीत रामायण कहीं बाकी नहीं रखे आपे यानी राजीकरण खातर। तो अब पूनम जी आप बात करी जो आप बॉल बनावनी सीड्स बॉल, एडा ही कुछ एक बीज और है जो आपने वास्ते खूब फायदेमंद है, और अगर वे आपने रोजमर्रा की जो दिनचर्या है बिरमायन अगर आप इन्हें शामिल करो तो कई तरह लाभदायक है शरीर वास्ते। तो इन खातर एक चर्चा आप आज इन कार्यक्रम में मैंने लेन आया हाँ आ कई है पूनम जी।
1: वही है कि कुछ औषधीय बीज हुए जो अपने स्वास्थ्य वास्ते लाभदायक होया करे, जैन चिया सीड्स की बात करा तो शरीर ने ठंडक और हाइड्रेट रखे, और अलसी रजी का बीज हुए हृदय ने स्वस्थ रखे, कद्दू का बीज है तो वो इम्यूनिटी बढ़ावे, सूरजमुखी रा बीज है वे अपनी त्वचा ने स्वस्थ रखे, तरबूज रा खरबूज रा बीज है वे शरीर ने ऊर्जा देवे और ठंडक रो काम करे, और तिल रा जो बीज है वे अपनी हड्डिया ने मजबूत करे है, मेथी रा बीज है वे अपन पाचन रो सुधार करिया करे है, और जीरो है जिको अपन गैस में अपच में राहत देवे, अजवाइन पेट दर्द में राहत देवे, सौंफ होगी तो वह ठंडक और पाचन रे महीने मदद करिया करे, धनिया रा बीज है वे पेशाब संबंधी जो भी समस्या है उनमें राहत देवे, कलौंजी ए वायु इम्यूनिटी ने बढ़ावे, सरसों मेटाबॉलिज्म बढ़ावे, करेला रा बीज ब्लड शुगर ने कंट्रोल करे, अमरूद है जो फाइबर से भरपूर रहा करे, अमरूद रा बीज जी का हुए, और नीम रा बीज है वे खून ने साफ करने में मदद करिया करे। तो किनी किनी तरीकों अपने बीजा ने अपने जिंदगी में शामिल कर सकता, कुछ ऐडा बीज है जिन्हें अपन रात रा भिगोन खा सका, कुछ ऐडा बीज है जिन्हें अपन पानी में उकाल ने उन्हें छानना अपन पी सका तो उनसे शरीर ने फायदो मिले। तो बस इन बातों ध्यान रखना है कि इन जो क्वांटिटी है वह एक दो चम्मच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो गर्म तासीर वाला बीज है वे अपने सीमित मात्रा में मायने लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, एक वो है कि भाई कौन सी ऋतु चल रही है उन ऋतु के अनुसार अपने इन बीजों ने काम में लेना चाहिए। एक सरल सो उपाय है जो अबार दिनों में खूब देखियो और चाल भी रियो है कि रात रात ज्यादा पे घणो कोई काम नहीं कर सको बड़ो लंबो चढ़ो, क्योंकि जो हरेक रिके नहीं के अबार रोज जीवन है वो बहुत व्यस्त चलिया करे। तो रात रा एक जो जग वे बड़ो सो एक लीटर रो या दो लीटर रो बिर मायने आप कोई भी बीज रात रा एक चम्मच या डेढ़ चम्मच जो भी पानी की मात्रा है उनने अनुरूप डाल दो आप। अगर एक लीटर है तो एक चम्मच या डेढ़ चम्मच आप डाल दो, पूरी रात मैंने रेवन दो, कहीं मत करो, सुबह आप निने काल जे वो छान पी लो, इन मायने कोई घनो टाइम नहीं लगे है, पर धीरे धीरे धीरे धीरे इन चीजों जो गुण है वे आप रे वास्ते जरूर फायदेमंद वेला। तो बिल्कुल अपना देखो

0: पूनम जी, आप इतना सारा गुण बताया है इन बीजा रा के लागे के कुछ एक चीज एडी होनी चीज है कि आप झटा झट बना अनफटाफट टाबरन दे सको के वे पीवन में भी यार वास्ते या खावन में आरामदायक वे वे बिना कोई नाक मुसी कोड़े खा भी लेवे और वे शरीर वास्ते भी पौष्टिक
1: वे। बिल्कुल एडी चीज है वह टावर वास्ते नहीं बल्कि अपना घर जो भी उम्र रहा है लोग अपना परिवार का सदस्य सबारे वास्ते फायदेमंद है। वो है प्रोटीन पाउडर। तो जितना भी अपना बीज बताए नहीं उनमें कुछ बीज अपा इन मैंने रेसिपी में शामिल करने और पाउडर घर ही शुद्ध तरीका तैयार कर सका और घर सदस्य ने दे सका। तो इन वास्ते आपने चीजें ला मखाना भुनियोड़ा चना बादाम अखरोट खरबूजा कद्दू सूरजमुखी रा बीज चिया और अलसी रा बीज खसखस रा दाना इलायची पाउडर और मिश्री पाउडर। इलायची और मिश्री ने छोड़ने जितनी भी अपा चीजें लेनी है आधा आधा कप ले लो आप। और सबसे पहले मखाना ने एक बड़ी कढ़ाई रे मायने धीमी आंच पर आप कुरकुरा होने तक भून लो। इनी तरह बादाम अखरोट और सगला बीजा ने 2-3 मिनट तक अलग अलग भून लो ताकि उनारी जो नमी है वह निकल जावे और पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होवे।
0: बिल्कुल
1: चिया बीज है खसखस है इन्हें भूनने की जरूरत को नहीं है। जब यह चीजा पूरी तरीके ठंडी हो जावे जब आप इन्हें सबसे पहले मखाना ने पीस लो और पछे जी को चीना ने पीस लो और सूखा मेवा जो है वे बीज ने जो आप पल्स मोड पर पीछो ताकि वे तेल है वो नहीं निकले और वे एकदम मतलब पाउडर टाइप में
0: दरदरा रहे।
1: और सगली चीजा ने एक बर्तन रे मैंने मिक्स कर लो इन रे मैंने इलायची पाउडर डाल दो

0: और मिश्री अगर नहीं डालनी चाहो या ना जो प्राकृतिक मिठास है वह बनी रहे तो आप मिश्री चाहो तो डालो और नहीं आपने पसंद है तो मत डालो.
1: सही है.
0: पसंद है तो आप मिश्री पाउडर डालना अच्छी तरीके को मिला लो तो आप प्रोटीन पाउडर तैयार है. एक साफ और सूखी बनी रहे महीने आप भरने एक दो महीना तक इन्हें इस्तेमाल कर सको. चाहो तो दूध में पियो, स्मूदी में पियो, शेक में पियो या पचे सुबह नाश्ते में जो आप ओट्स और दलियो खाया करा उन्हें माते भी बुरक ने आप इन्हें खा सको.
1: बिल्कुल. और एकदम आसान तरीको है अपनी सेहत सुधारने रो.

पूनम जी, आपने जो मैड भाषा रो कार्यक्रम है इर मायने आपा एक खास सेगमेंट हर बार ले आया करो, जिर मायने आपा इन भाषाओं गुथी जोड़ी इनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, आपनो जो समाज है, रहन सहन है, बिना बारे में आप बातचीत करिया करो और एक

मीठी सी कहावत अपनी सखिया ने सुनाया करो। तो आज की कहावत है ज्ञान और घुचो दूजा कई चोखो लागे। मतलब वो है कहो कि अब देखो के कोई सलाह देवनी है नहीं तो आप दो जब तक तो ठीक है पर जब वह लेवनी बात आवे नहीं तो शायद ही कोई वेला जोड़ माते अमल करे। और घोचो करनो यू ही है कि भाई कोई चीज री आपे कि नहीं क्यों बार बार का यू नहीं करियो और यू नहीं करियो हर टाइम कोई मीन मेक निकालनी या परेशान करनो कोई बात में तो आप दूजा ने करो जब तक ही ठीक लगी आपा ने कोई कर ही नहीं जन आप ही दोरा दोरा दोरा दोरा हो कि भाई आ चीज ठीक नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ज्ञान और घुचो दोयर माने आ चीज लागे हुए कि दूजा ने मिले जट तक ही ठीक है आपा तो ही नहीं आवे तो बढ़िया बात है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: देखो कि बाघ और भवरा मोरिया ये सब अषाढ़ और सावन रा संकेत है और बिल्कुल बढ़िया लगे। पर आजकल जो आप देख रहे हो जो मौसम है इर माने आपा आई आशा रखो कि झटसू इंद्र राजा पधार जावे। टाइम देखता था कहाँ पूनम जी यूं लाग रही हो कि समय री चक्री रे सागे सागे आपा ने भी चालनो पड़ी और आपने सखियां सु विदा ले उन्हें टाइम आएगी है। तो चालता चालता आप सगड़ा ने बताए दो कि इन कार्यक्रम री परिकल्पना संयोजन और प्रस्तुति राम निवास चोयल री थी और कंसोल पर ए आपने इतना फूटरा फूटरा गीत जो जुड़ाया सुनाया बेहा जय श्री। तो इन सागे ही आपरी दो ही सखियां ममता राजपुरोहित और
1: पूनम देवड़ा ने दिराओ सी
0: चाला
1: चाला राम राम, राम।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में

0: योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के

0: अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा।

0: ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर

0: भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है, फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है, हमारे नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ।
0: जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी,
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया।
0: जी,
1: मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी, रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: ये रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही

0: सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं।
1: देखिए, अगर फिलोसफिकल इससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करें।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी?

0: भैया?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
0: टैंकी नवा के पड़ती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
1: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
0: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है।
1: हाँ वो तो है
0: ना।
1: जी जी ये तो सहयोग परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये मुझे जी,
0: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सच्चे काल। मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ। लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना, वो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
0: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है। मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना, ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा
1: अच्छा।
0: एक माले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ।
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
0: और आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
0: बहुत
1: तरह से
0: खुश,
1: लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए
0: सोचती हूँ ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुनके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना?
1: जी
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मुझे दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात,
1: शायरा हूँ
0: जी
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरी,
0: पेन नेम है आपका लहरे,
1: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस है,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम।

0: फुहा रहे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: हाँ घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी बनाती सिर्फ, चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती। अच्छा। फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम,
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
0: जी
1: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस, ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
1: मैम मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।
2: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
3: हेलो सहेली
2: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
3: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
2: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
3: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
2: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
3: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
2: जी हम आपकी खुशी
3: बयान नहीं कर सकती।
2: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
3: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
2: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे
0: जी। विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे
0: जी, बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम।

0: खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: अपने बारे में कुछ बताइए।
4: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, पियर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
3: जी।
4: बनारस में हूँ, एक वैसे गृहिणी हूँ।
3: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
4: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
3: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
4: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हमारी जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
3: जी
4: जिंदगी में
3: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
4: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
3: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ,
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

0: रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: जी।
1: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, यही हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी,
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियाँ भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: नहीं, ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाएगा कुछ क्षण।

0: के लिए और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
0: अपनाना होगा और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
1: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही रहते हैं कुछ
0: जी।
1: नहीं।
0: हाँ। हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमान।

0: की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: चलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर

0: का सिंह है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था। उसके लिए अतखिला

चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरी करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करे, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी, लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां। नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हूं

हरा भरा। हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के साबू थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई। तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमन

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है, महज मुस्कुराती हुई। क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली

औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था, वो अब महसूस कर रही थी, उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही प्रेम में थी।

दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में।

होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूँ तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा, याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्वों में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो
तो कभी

0: पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती। नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें, ये मौसम।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यहां कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसकी गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा

नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं, शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर की शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से, जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं

थी, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय 5 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हाँ जी, आज की शाम का माहौल पूरी तरह से सेट है। बाहर का माहौल भी बढ़िया हो रखा है साहब। धूप से कुछ हद तक आज के दिन को राहत मिली है। टेम्परेचर थोड़ा सा गिर चुका है, माहौल सेट हो चुका है। और एज वी नो शाम के 5 बज चुके हैं, तो प्रोग्राम युवाणी लेकर हाजिर हूँ मैं आज, आपका रीड दोस्त राहुल। और आज की शाम बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, क्या कुछ खास बातें जो आपको जानना जरूरी है, युवाओं को जानना जरूरी है, उसी प्रोग्राम को लेकर, प्रोग्राम जिसे युवाणी नाम कहते हैं, आज हाजिर हूँ मैं आपके साथ। और बढ़ेंगे आगे, लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद म्यूजिकल ट्रैक।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित

0: करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है, तो युवाओं के लिए खास अपडेट आ चुकी है। और हम सभी को जैसे कि पता है 5 और 6 जुलाई को जो है वो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। RSMSSB कंडक्ट कराने वाली है। और इस एग्ज़ाम के बारे में छोटी सी डिटेल आपको बताऊं तो भैया, सिटी जो थी वो डिक्लेयर पहले कर दी गई थी कि भैया आपकी जो सिटी है वो कब किस एग्ज़ाम आपका जो है वो कहाँ होने वाला। और अब जो है वो एडमिट कार्ड भी प्रॉपर तरीके से जारी कर दिए गए हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाके चेक कर सकते हैं, जो कि है SSOID.rajasthanservicerules.in। जी हाँ बिल्कुल, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से लेकर 12:30 तक चलेगी। अगर आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आप जो हैं वो 8:30 से पहले पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं, वरना आपका प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया जाएगा। 1 मिनट भी अगर आप 1 सेकंड भी लेट हुए तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। पहला एग्ज़ाम जो होगा उसमें जनरल नॉलेज और साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद दूसरी शिफ्ट में वापस 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा 3 से लेकर 6 बजे के बीच में, जहां आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर दोनों के मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, ये एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: वेल, जिस तरीके से आजकल हम चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं ना, इतना मन लगाकर इतने शिद्दत के साथ खिताब पढ़ लेते, तो आज बॉस को इंग्लिश में मेल लिखवाने के लिए इसकी जरूरत हमें ना पड़ती। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? प्रोग्राम यूवानी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल, और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन दिनों भर भर के किया जा रहा है। तो हमने हमारे शहर वासियों से जानने की कोशिश करी है कि भैया, अगर आपकी रियल लाइफ में असिस्टेंट बनकर AI आ जाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ जाता, तो आप उससे क्या काम करवाते? आइए जानते।
1: Hi, this is Muskan Singh and I'm Kane College. So, अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती, तो मे बी आई विल मेक AI माई बॉयफ्रेंड, बिकॉज ही ऑलवेज सॉल्व माई ऑल प्रॉब्लम्स लाइक वेन एवर आई फेल्ट अनसर्टिनिटी। सो आई फील लाइक ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, एंड दैट रियली काइंड ऑफ लाइक फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प आई वुड से। सो या मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाती।
2: अगर AI एक दिन आपकी जगह कॉलेज जाएगा तो क्या हो जाएगा?
1: अगर वो आया तो डेफिनेटली फिर मेरे बैक नहीं आने वाले हैं सब्जेक्ट्स में। आई एम डैम श्योर नहीं आने।

0: ओके, अगर AI आपके लाइफ में आता है असिस्टेंट बन के, सबसे पहली चीज क्या कराओगे आप उसे?
1: हाय, मेरा नाम आकांक्षा है, एंड अगर AI लाइक हमारी लाइफ में होता तो हम उससे पहले यूजुअली हमारे घर के डेली लाइफ के काम करवाते, बाकी कुछ नहीं।
0: घर के काम करवाते?
1: हाँ, क्योंकि हम खुद नहीं करते ना।
0: ओके, एक वन वर्ड में AI को डिस्क्राइब करना है, दोस्त, दुश्मन, टीचर या फिर जादू?
1: दोस्त।
0: अगर AI आपके मदर फादर का फेवरेट बन जाएगा तो आपको किस बात की टेंशन होगी?
1: कहीं मेरे राज ना खोल दे, बस चुगली ना कर दे।
2: हेलो, मेरा नाम हेमंत है। अगर AI मेरा असिस्टेंट होता, आई वुड मेक AI टू टेक्स्ट माय GF गुड मॉर्निंग मैसेज बिकॉज़ आई एम टू लेजी टू डू इट।
0: सबसे पहली चीज उससे क्या करवाते हैं आप?
3: घर के काम
0: और क्या-क्या?
3: झाड़ू पोछ। हेलो, माय नेम इज निकिता एंड आई एम फ्रॉम केन कॉलेज। बर्तन, जिम, डांस, जो काम कर सकते हैं सारे। सबसे मेन तो एग्जाम दिलवाना।
0: थैंक यू सो मच।
4: चलिए जी, तो ये थी हमारे युवाओं की AI के प्रति बात। आप और हम फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने। मजेदार से गानों में अगला

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: बिल्कुल जी, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल। और मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि आपको सिर्फ गाड़ी चलाने नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन से मेरा ये मतलब है कि आपको गाड़ी ठीक करना नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका अगर कोई चालान आ गया है, ठीक है, तो आपको उसे फिल कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चालान आ तो जाता है, हमें पता भी चल जाता है, हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि भैया चालान हो चुका है आपको भरना, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर हम अगर 75 से 90 दिनों तक करेंगे, तब तक तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम जो है वो चालान पे कर सकेंगे ऑनलाइन। नहीं तो अगर वो ड्यूरेशन अगर 90 दिन से ऊपर चली गई उस एक चालान की, तो फिर आपका वो चालान जो है वो कोर्ट में चला जाएगा, और जहां आपका जो चालान कटा है जिस एरिया में, चाहे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूमे हो, आपको उस कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। आप फिर ऑनलाइन चालान कभी भी नहीं भर सकते हैं, उसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई चालान आ गया है तो आप जो है वो अपना चालान ऑनलाइन ही भर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चालान आए ना, ऐसी चीज़ें करो ना, सीट बेल्ट प्रॉपर लगाओ, स्पीड को अपनी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को जो है उस कंट्रोल में रखो, जहाँ आप जिस वे में चल रहे हो उसी तरीके से रखो। और अगर आप ऑनलाइन चालान पे करना चाहते हैं, आपको पता है कि भैया चालान आ चुका है, तो चालान पे करने का एक तरीका है, ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि है parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो चालान भर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको चेक चालान स्टेटस आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें चालान नंबर, व्हीकल नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इन तीनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो कैप्चा दिया होगा उसे फिल करने के बाद आपकी जो चालान की डिटेल है वो सारी आ जाएगी, 1 है 2 है 3 है 4 जितने भी चालान हैं कटे हुए हैं, या अभी उसे आप पे कर सकते हैं, या फिर आपका जो है चालान ओवरड्यू हो चुका है, उसे पे करने की तारीख निकल चुकी है, वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, बाय UPI, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप चालान को जो है वो फिल कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय करेंगे।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों

0: को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: आज हम एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोग्राम युवाण इस वक्त चल रहा है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक ऐसे प्लेयर की बात जिसका जो क्रिकेट एक्शन है, क्रिकेट बॉलिंग एक्शन है, हम हर बार ट्राई करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि यार इस एक्शन से मैं बॉल फेंकूंगा गली क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन वो एक्शन जो है वो बहुत बार मतलब परफेक्टली तो हो ही नहीं पाता है। जी हम बात कर रहे हैं हरभजन सिंह, जिसका निक नेम है बज्जी। उनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे, और उनके बारे में अगर बात करें तो

0: जी, उनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे। और उनके बारे में अगर बात करें तो जब उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करी थी ना, तो वो खुद से तो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन कोच के कहने पर उनकी सलाह से उन्होंने फिर ऑफ स्पिन को चुना और ऑफ स्पिनर बने। 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके काल का जो है वो स्वर्णिम काल रहा। उस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टूर्नामेंट चल रहा था, मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया गजब के फॉर्म में चल रही थी। इस सीरीज में उन्होंने जो है वो हरभजन सिंह ने 32 विकेट टोटल लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। और ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म थी वो कुछ इस कदर थी कि उन्होंने उस मैच से पहले 16 टेस्ट मैच लगातार जीते थे, वो मैच हार ही नहीं रही थी। लेकिन इस जीत पर अंकुश लगा, वजह थी हरभजन सिंह, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और 2-1 से वो जो है वो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी वो सीरीज थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की, वो उन्होंने जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसके बावजूद, इसके बाद हम अगर हरभजन सिंह के करियर की बात करें, तो उन्होंने टेस्ट मैच टोटल खेले थे 103, जिसमें से 417, माफ कीजिएगा, 417 जो है विकेट उन्होंने अपने नाम किए। और ODI मैच की बात करें तो 236 कुल मुकाबले उन्होंने खेले और 269 यानी 269 विकेट उनके नाम रहे। T20 करियर कुछ खास नहीं रहा, छोटे मुकाबले थे। जब तक वो T20 करियर की शुरुआत हुई थी तब तक वो अपने रिटायरमेंट के करियर पर थे, और 28 टोटल मैच खेले और 25 विकेट लिए। और इस बीच टोटल उनके मैचेस की बात करें, इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, तो 367 मैच उन्होंने खेले और 711 विकेट उन्होंने लिए। ये इनका क्रिकेट का करियर रहा। शुरुआत जिनकी हुई थी 3 जुलाई 1980 से, और आखिरी जो मैच उन्होंने संन्यास लिया वो था 24 दिसंबर 2021 का, वो दिन जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया। फिलहाल प्रोग्राम ये वाले चल रहा है, लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आप एंजॉय करेंगे मजेदार से गाने।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम यवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप, और फ्राइडे की शाम है। जिनका 5 डेज़ का वीक है उनके तो भैया आए हाय, आज की शाम तो बस मौजा ही मौजा होने वाली है, क्योंकि सैटरडे और संडे का ऑफ मिलने वाला है। और मौसम ने जो दस्तक दी है, जो हल्का सा टेम्परेचर में गिरावट आई है, तो इस वीकेंड पर उन्होंने, मेरे को लगता है, अब तो कहीं बाहर गाँव जाने का, घूमने का प्रोग्राम भी बना ही लिया होगा। और प्रोग्राम जमाने चल रहा है तो क्रिकेट की बात कैसे पीछे रह सकती है। और एक नई अपडेट भी आ चुकी है, भारत और श्रीलंका के बीच आने वाले टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत भारतीय क्रिकेट टीम अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर अगस्त में जो है श्रीलंका का दौरा करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहला जो टेस्ट मैच है वो 15 से लेकर 19 अगस्त तक गोल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा। और अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग की बात करें तो भारत का जो स्थान है फिलहाल 5वें स्थान पर भारत है, और वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जस्ट एक स्टेप आगे यानी 6ठे स्थान पर। जी बिल्कुल, भारत 5वें और श्रीलंका जो है वो 6ठे स्थान पर मौजूद है। फिलहाल लेंगे के छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से हाजिर होंगे।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से प्रोग्राम युवाने चल रहा है और शुक्रवार का दिन है। मजेदार सी प्लेलिस्ट के साथ एक बार और एक नई खबर के साथ भैया गेम बात कर लेते हैं।

चेस किए। आर प्रागनंदा ने कीमर को 26 चाल से हराया। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने ग्रैंड चेस टूर के जागरेब चरण की शानदार शुरुआत करते हुए टॉप सीड जर्मनी के विसेंट कीमर को सिर्फ 26 चाल में ही हरा दिया। प्रागनंदा ने आक्रमण खेल दिखाया और लगातार दबाव बनाकर 2 अंक हासिल किए। दूसरे राउंड में उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम वाशिय लग्रेव से ड्रॉ खेला और वहीं डी गुकेश की अगर बात करें तो उन्होंने पहले राउंड में हारने के बाद दूसरे राउंड में क्रोएशिया के इवान सारिच को भी हरा दिया। फिलहाल ये थी क्रिकेट अपडेट के बाद चेस की खबर। बढ़ते हैं आगे म्यूजिकल ट्रैक के बाद, आपसे फिर जुड़ेंगे।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: लगे थे जिसकी साजिश में और कर रहे थे भगवान से जिस चीज की ख्वाहिश, अब वो हो चुकी है पूरी। जी हाँ, मौसम बदल चुका है, बारिश का जो माहौल है बिल्कुल जम चुका है शहर में। और जिनको इंतजार था ना कि यार ये टेम्परेचर तो डाउन हो चुका है, लेकिन अब हमें जो बारिश की बूंदें हैं वो, ये माहौल वो कब नजर आएगा, तो बिल्कुल अब नजर आने लगा है। और मजेदार से गानों के बीच में और बरसात भी आप अब एंजॉय कर रहे हैं। और युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है, तो युवाणी में जो है वो सरकारी नौकरी की जानकारी किस तरह से पीछे रह सकती है, लीजिए बिल्कुल बता देते हैं आपको। सरकारी भर्ती आ चुकी है, RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन के लिए 6,557 पोस्ट पर भर्ती जारी कर दी गई है। और इसके लिए एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 18 से 30 साल तक के जितने भी युवा हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। और आप जो है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कब कर पाएंगी, 30 जून से अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा डिटेल इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं RRBApply.gov.in, ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की मैं बात करूँ तो BE, BTEC, IT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, और आपके पास 12th पास विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आप 12th पास हैं, तो इन पोस्ट पर आप भर्ती जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट मैंने बताई आपको, RRBApply.gov.in। लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद गाना एंजॉय करेंगे।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न

क्या बात है, बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम गुजवाने का जो सफर है अब यहीं होता है समाप्त। आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, इस आवाज़ का नाम राहुल और कंसोल पे हमारे साथ विनीता जैन। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान की लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक

0: इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM एंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

हेलो हाय गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट राधिका राठी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: दिन भर के भागदौड़ के बाद एक बार फिर शाम ने दस्तक दे दी है, और इस बार की शाम कुछ अलग सी है। जोधपुर की तपती गर्मी के बाद ये बारिश किसी राहत से कम नहीं लगती। अगर हम बात करें कि ये कहीं बारिश में कहीं हल्की हल्की फुहारें, कहीं बादलों की आवाजाही और कहीं भीगी मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुँच जाती है। बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, ये मन का मौसम भी बदल देती है।

जो बातें धूप में कहीं खो जाती है वे अक्सर भीगी शामों में याद आने लगती है। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ मीठी यादें, कुछ नई उम्मीदें, सब जैसे इस मौसम के साथ फिर से जाग उठते हैं। आज की इस शाम में हम किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहेंगे, बात करेंगे इस बदले हुए मौसम की, स्कूलों में लौटती रौनक की, परिवार के साथ बिताए छोटे छोटे पलों की जो अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। तो चलिए, चाय की एक प्याली हो, खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें हो, या सफ़र की थकान के बीच मिलते कुछ सुकून के पल, अगले एक घंटे तक बस हमारा साथ रहेगा मौसम का, संगीत का और दिल से निकली कुछ बातों का।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह, अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
4: दोस्तों, बारिश अपने साथ एक नई शुरुआत भी लेकर आती है। स्कूल खुल चुके हैं, नए बैग, नई किताबें, नई क्लास और नए सपने। किसी के लिए ये बोर्ड परीक्षा का साल है, कोई कॉलेज की नई दुनिया में कदम रख रहा है और कोई अपने प्रतियोगी परीक्षा के सपनों को सच करने में जुटा है। मौसम बदल रहा है और शायद यही वक्त है अपनी सोच में भी थोड़ा बदलाव लाने का। अगर पिछले कुछ महीनों में मन मुताबिक नहीं हुआ है आपके, तो कोई बात नहीं, हर बारिश सूखी धरती को फिर से जीना सिखाती है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: भारत में शायद ही कोई ऐसी शाम होती होगी जिसमें चाय की खुशबू ना हो। शाम और चाय, इन दोनों का रिश्ता शायद शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। बारिश की हल्की फुहार हो, हाथ में गर्म चाय का कप हो और कुछ पल बिना किसी जल्दी के। आजकल जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि सुकून के पल भी हमें ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन सच तो यही है, खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह नहीं चाहिए। एक कप चाय और 2 मिनट की राहत, कभी कभी इसमें ही खुशियां होती है। पहले की शाम में और आज की शाम में एक फर्क ज़रूर है। पहले शाम का मतलब होता था छत पर टहलना, पड़ोसियों से बातें, बच्चों के खेलने की आवाज़ें। लेकिन अब ज़्यादातर शामें मोबाइल की स्क्रीन पर बीत जाती है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं।

0: राष्ट्र को समर्पित HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर में, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट राधिका राठी। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया देखकर लगता है सबकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जब आसमान की ओर देखेंगे तो महसूस होगा कि बादल कभी एक जगह नहीं ठहरते, वे चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और शायद यही हमें भी सिखाते हैं कि जिंदगी में भी कोई परेशानी हमेशा नहीं रहती। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: जैसे ही बारिश की पहली फुहार पड़ती है, मन अपने आप किसी पुराने गीत की तरफ चला जाता है। शायद इसलिए संगीत और बारिश का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों बिना कुछ कहे सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: बारिश की हर बूंद एक जैसी होती है, लेकिन हर इंसान उसे अपने अपने अंदाज में महसूस करता है। किसी के लिए ये राहत है, किसी के लिए याद, किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए एक नई शुरुआत। बस यही तो खूबसूरती है इस मौसम की। ये सबके दिल में उतरती है, लेकिन हर दिल में एक अलग कहानी छोड़ आती है।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों

0: का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: बारिश में सफर करने का अनुभव भी बड़ा दिलचस्प होता है। बस की खिड़की से बाहर गिरती बूंदें, बाइक पर धीरे धीरे घर लौटते लोग, छाता लेकर इधर उधर भागते बच्चे और सड़क किनारे चाय की दुकानों पर बढ़ती रौनक। ऐसे मौसम में शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन शायद इसी धीमी रफ्तार में जिंदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने

0: की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: दोस्तों, बात करते हैं कुछ जानकारी की। जी हाँ, जब दुनिया के पश्चिमी देशों में और चीन में रिफाइनरियों का विभिन्न कारणों से उत्पादन कम हो रहा है, ऐसे समय में बनकर शुरू हो रही है राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी। पचपदरा की 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष रिफाइनिंग और 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी वैश्विक रिफाइनरी क्षमता को बढ़ाएगी और भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से यह ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल HPCL राजस्थान रिफाइनरी देश में पिछले एक दशक में स्थापित पहली रिफाइनरी कम कॉम्प्लेक्स है। और 4 जुलाई शनिवार को इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

दोस्तों, दिन चाहे कितना भी कठिन रहा हो, सूरज फिर भी मुस्कुराते हुए विदा लेता है। तो हम भी हर दिन का शुक्रिया अदा करें, हर छोटी खुशी को महसूस करें और उम्मीद के साथ कल का इंतजार करें। इसी मुस्कान के साथ मैं राधिका राठी आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों पर भरोसा कीजिए।

0: श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से रिले कार्यक्रम।
1: विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जय माला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है उपकार।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, इससे पहले आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। दिल एक मंदिर, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के, तर्ज है रवि की।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

हीर रांझा, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोलों को सुरों में ढाला है मदन मोहन ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है खयाम की, फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अनमोल यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज से ये जो श्रृंखला शुरू हो रही है अनमोल यादें, इस कार्यक्रम में ऐसे अनमोल गीतों से परिचय करवाएंगे आपका जो हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास के छुपे खजाने का एक अनमोल हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, हर गाना एक इंसान की तरह होता है जो अपना नसीब लेकर जन्म लेता है। कुछ गीत तूफान मचा देते हैं तो कुछ पॉपुलर होते हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए और फिर उन्हें लोग भूल जाते हैं। और ऐसे भी कई नगमे होते हैं जो बेहद सुंदर होकर भी लोकप्रियता की ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंच पाते। तो आज इस श्रेणी में हम आपका परिचय ऐसे ही तीन गीतों से करवा रहे हैं। इस पहले भाग में कार्यक्रम के श्रृंखला के हर भाग में हमारे साथ होंगे जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: शुक्रिया जयन जी, और सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहा जाता है कि किसी भी नए कार्यक्रम का आरंभ ईश्वर को याद करके किया जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आइए एक भक्ति गीत से हम शुरू करते हैं, जिसकी रचना बहुत ही कमाल है। पहले आप गीत सुनिए और फिर मैं इसके बारे में बात करूं।

0: राजीव जी 1966 की ये फिल्म है छोटा भाई, जिस फिल्म से ये रचना थी लता जी की आवाज में भगवान ने अपने जैसा, तो ये जो भजन है आनंद बख्शी का लिखा हुआ और इसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, क्या खासियत इसकी रही है?
1: इसमें जो शब्द है कि भगवान ने अपने जैसे हर इंसान को बनाया, तो भगवान के अंदर तो कोई पाप नहीं है, तो ये पाप कहाँ से आया, हम झूठ कहाँ से बोलना सीखे, ये सब चीजें जो बहुत ही मतलब अलग ही रचना, अलग ही लेवल पे बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है। और इसके लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि बख्शी साहब की जो दूरदृष्टि थी ऐसी चीजों में
0: जी, जी।
1: वो कमाल थी, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में सोचकर इसे एक फिल्मी गीत भी बना सकेंगे कि जो धुन है मेलोडी से भरी है, और इसके लिए मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है। बल्कि तो मैं तो ये कहूंगा कि ये गाना सुन के हमेशा मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं और एक गाना सुनाना चाहता हूँ ऐसी फिल्म का जिसके सारे लगभग गाने बेहद पॉपुलर हुए। आप जानते होंगे कौन है जो सपनों में आया, कहाँ चल दिए,
0: क्या बात,
1: फिर उनसे मिली नजर, और फिर मेरे तुम्हारे बीच में, अब
0: झुक गया आसमान फिल्म के गीतों का आप जिक्र
1: जी
0: करते
1: हैं। झुक गया आसमान में एक ऐसा गाना था जो बहुत ही खूबसूरत होकर भी किसी वजह से इन गानों के टक्कर में नहीं आ पाया। शैलेंद्र जी ने हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है, और वो एक बहुत ही वेस्टर्न ओरिएंटेड ट्यून जो बनाई थी शंकर जयकिशन साहब ने, और उसके बोल है सच्चा है घर प्यार तेरा सनम।

0: राजीव जी, अब किस गीत की बारी है?
1: चलिए, मुझे लगता है माहौल तो सेट हो गया है
0: जी।
1: अब एक ऐसा सुरीला नगमा मैं पेश करने जा रहा हूँ जो इतना मधुर है कि अगर आप उस वक्त चाय पी रहे होंगे तो उसमें शक्कर डालने की भी जरूरत नहीं होगी।
0: अच्छा,
1: 1977 में एक फिल्म आई थी जो चली नहीं, उस फिल्म का नाम था दरिंदा।
0: हाँ।
1: उस फिल्म में इंदिवर साहब ने जो अपनी ही खास शैली में लिखा हुआ ये गाना है
0: जी।
1: वो काफी रोमांस भरा है लेकिन जिद से भी भरा है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और ये गीत जो है वो कल्याण जी आनंद जी ने बड़ी ही खूबसूरती से इसकी धुन बनाई है और ये गा रहे हैं मुकेश जी, और मुकेश जी की आवाज क्या कहने।
0: तो चलिए सुनते हैं 1977 की फिल्म दरिंदा का।

0: आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा। ये इंदिवर जी की एक खास शैली थी
1: जी,
0: कि इंटेंस रोमांस जो है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे
1: जी,
0: जीने के बहाने लाखों है, जीना तुझको आया ही नहीं, ऐसे गानों के लिखने वाले ये मास्टर थे। और कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के साथ तो इनकी कॉम्बिनेशन हमेशा कमाल रहती थी
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपसे विदा लेते हैं राजीव जी, अगली कड़ी में हम अपने श्रोताओं से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।
0: और तब तक अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।
2: अनमोल यादें, अनमोल यादें।

श्रोताओं, हवा महल में आज आप सुनेंगे पड़ोसी का कैमरा, ये प्रहसन। लेखक हिमांशु श्रीवास्तव, निर्देशक भगवान साहू।

0: मिठाई लाल जी, ये दोनों हाथों में रबड़ी कपटी, खूब रबड़ी खाओ भाई, मौसम सर्दी का आ गया, यही वक्त है सेहत बनाने का।
1: अरे रे मनीष शंकर, अरे हाँ, ये हैंडबैग आज क्यों इतना भारी?
0: कोई खास बात नहीं, एक कैमरा खरीदा है।
1: कैमरा?
0: हाँ,
1: यानी फोटो खींचने वाला कैमरा।
0: हाँ भाई, जमाने से सोच रहा था कि।
1: अरे दिखलाओ भाई दिखलाओ, जरा कमाल कर दिया तुमने।
0: यहाँ राह में दिखाऊ यार?
1: अरे यार आज इतवार है, कई दुकानें बंद है, चलो किसी दुकान पे।
0: अरे रे कल वल देख लेना, कैमरा है बस, कोई अचंभे का बच्चा तो है नहीं। अभी जाओ रबड़ी खाओ, कई कपटी हाथ से छूट पड़ी तो।
1: अच्छा भाई।
2: मुक्ता, ओ मुक्ता
3: आई।
0: अरे भाई जरा इस बैग को होशियारी से पकड़ो तो।
3: क्यों क्यों, क्या है बैग में और कहाँ रह गए इतने देर? रविवार को भी घर से बाहर, सर्दी गिरने लगी और समय भी।
0: कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, 7 बजकर यही कोई 48-49 मिनट।
3: अरे बैग तो थोड़ा भारी लगता है।
0: अरे संभाल के संभाल के मुक्ता।
3: क्या होगा, कोई अच्छी सी साड़ी या ब्लाउज पीस?
0: बस बैग मत खोलो और समझ जाओ कि इसमें क्या है, तो मान लूँ कि हो लाल बुझक्का।
3: और जनाब मैं हार मान लूँ तो मेरी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी?
0: तो मान लो हार।
3: मानती हूँ।
0: इसमें कैमरा है मेरी जान।
3: सचमुच?
0: हाँ बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या देख लो निकाल के।
3: अच्छा, अरे ओहो, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा किया, तुम्हें बहुत दिनों से एक कैमरा लेने का शौक था।
0: देखो डार्लिंग, इसके लिए मैंने वो पैसे बटोर के रखे थे जिन्हें तुम मेरी जेब खर्च के लिए देती थी।
3: अच्छा,
0: खुश होना।
3: क्यों नहीं, मैं तो खुद सोचती थी कि किसी तरह तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाए। अच्छा चलो खाना खा लो, रोटी ठंडी हुई जाती है।
0: अच्छा चलो। ये तो बेखबर वाच रिपेयरिंग हाउस वाला है, क्यों मुक्ता?
3: हाँ नजाकत हुसैन।
0: ये तो भयानक गप्पी है, चाय भी न पी सका। और अच्छा खैर, तुम उसे भी चाय पिला देना और रसोई की तैयारी।
3: अच्छा पहले दरवाजा तो खोल दो।
4: भाई बाबा क्या कहने हैं, मुबारकबाद देने आया हूँ।
0: अरे काहे की मुबारक नजाकत साहब,
4: आपके भी नखरे का जवाब नहीं भाईजान, रात अच्छा खासा नया कैमरा ले आए।
0: कैमरा? ओह कैमरा, आपसे किसने कहा?
4: अरे कहेगा क्या कोई दुश्मन, दुश्मन तो सुनकर बस चलेगा ही।
3: आखिर हम भी तो सुने सही।
4: हाय हाय, भाभी साहिबा के भी क्या कहने हैं, कुर्बान जा।

0: हूँ। अरे ये जो अपना पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाई लाल, उसी ने बतलाया। खैर कोई बात नहीं, मणिशंकर भाई आज सूरज डूबने से पहले मेरे दोनों बच्चों की तस्वीर।
1: बच्चों की तस्वीर?
0: हाँ हाँ हाँ, दुकान में अपनी सीट के सामने फ्रेम कराकर लगा दूंगा।
1: अरे मुक्ता इन्हें चाय पिलाओ भाई। अच्छा भाई दोनों बच्चों की तस्वीर तो खींच दूंगा, मगर फिल्म और धुलाई का खर्च।
0: बस बस बस बस, बस ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात यकीन करने को नहीं कि तुम मुझसे इनका खर्च लोगे, तो भाई रही बात पक्की? क्यों?
1: अच्छा रही पक्की।
0: अच्छा तो मैं चला।
2: अरे चाय तो।
1: अरे जाने भी दो, लाओ एक कप मैं पी लेता हूँ और एक कप तुम पी लो।
2: कौन?
3: मैं हूँ गुरु घंटाल।
2: अरे राम ये तो अपने मकान मालिक हैं।
1: तो खोल दो दरवाजा और तुम भीतर चली जाओ।
2: अच्छा।
4: जय राम जी की मणिशंकर बाबू, कहिए क्या हाल चाल
1: है? बस दुआ है आपकी, कहिए कैसे कृपा की?
4: अरे भाई सुना कि कैमरा लाए हैं आप?
1: जी हाँ ले तो आया हूँ।
4: बस तो बच्चों का मन रख दीजिए, मेरी बेबी भी चाहती है।
1: क्या चाहती है?
4: है बात यह है कि कल मेरी छोटी बच्ची अपनी गुड़िया का ब्याह पड़ोस की लड़की के गुड्डे से रचा रही है।
1: अच्छा अच्छा।
4: मत पूछिए, बहुत से लड़कों का हुजूम रहेगा। हाँ। करीब 8 बजे रात में आप उसी अवसर पर सिर्फ 15-20 फोटो।
1: मगर गुरु घंटाल जी रात को फोटो लेने के लिए तो फ्लैश लाइट चाहिए और वो तो मेरे पास है नहीं।
4: अजी साहब तो कौन बड़ी जमा पूंजी लगती है, एक फ्लैश लाइट खरीद लीजिए, आपके और भी काम आ जाएंगे। तो रहा पक्का कल रात 8 बजे, भूलना नहीं। अच्छा तो मैं चलूं।
2: क्या कह रहे थे? शायद फोटो लेने की बात।
1: मत पूछो, समझो कि मैं मर गया। अच्छा मुक्ता एक बात तो बताओ, रखती हो कुछ अपने पास?
2: मतलब?
1: कुछ पैसे हैं, फ्लैश लाइट खरीदनी है।
2: थोड़े से पैसे रख छोड़े हैं, दे दूंगी।
1: अरे भाई मकान मालिक है, और हाँ रसराज को भी तो फोटो देना है, स्टूडियो में धुलने और प्रिंट करने को दे आया हूँ। पैसे ही नहीं है कि लाऊं, और रसराज है कि सुबह शाम तक अदा करता है।
2: अच्छा वो कवि महोदय, धुलाई और प्रिंट के पैसे क्यों नहीं मांग लेते तुम?
1: अरे भाई वो कवि है ना।
2: मगर मुझे उस रोज एक बात अच्छी नहीं लगी।
1: क्या?
2: वो मेरे साथ फोटो लिवाने को मचल गया। हाँ। और तुम भी तैयार हो गए, अपने दोस्तों को दिखाएगा और।
1: अरे राम राम राम राम, रसराज ऐसा नहीं कर सकता, कितना आदर करता है तुम्हारा।
2: कोई आया है?
1: देखो तो सही।
0: जयराम जी की मणिशंकर भाई।
1: ओहो जयराम जी की, जयराम जी की। कहिए मिठाई लाल जी कैसे कैसे पधारे?
0: अरे भाई तुम फोटो खींचने का कैमरा क्या ले आए, मुझसे नाता ही तोड़ लिया। कवि जी की तस्वीर ली गई, मकान मालिक गुरु घंटाल जी की बेटी ने गुड़िया का विवाह रचाया तो उस अवसर की तस्वीरें ली गई, और क्या नाम है नजाकत हुसैन के बच्चों की तस्वीरें उतारी, और फिसड्डी पड़ा तो मैं, क्या गजब हो गया, कहो भी तो।
5: अरे भाई मुझे क्या घर परिवार नहीं है, क्या मैं अरमानों की दुनिया से दूर हूँ, या कि तुम मेरे पड़ोसी
1: नहीं? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन कहता है भला।
5: तो फिर आज तुम दफ्तर से सूरज डूबने से पहले आ जाओ, मेरे बच्चे और बच्ची की तस्वीर खींच दो, बच्ची को राधा और बच्ची को कृष्ण का मेकअप कराऊं।
1: मगर बात यह है मिठाई लाल जी कि फिल्म धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
5: जी हाँ जनाब, जैसे वे आपके बच्चे ही नहीं। छोड़ो ये चोचले, बस आज शाम याद रहे सूरज डूबने से पहले मैं उन्हें तैयार रखूंगा।
2: हे भगवान ये कौन पहुंचा?
0: दरवाजा खोलिए भाईजान।
3: आदा वर्दे नजाकत भाई।
0: भाई माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए।
1: क्यों क्या हुआ, आज तो तेवर ही बदले हुए जनाब के।
0: भाई साफ इनकार कर जाते तो अच्छा था, बच्चों की तस्वीर क्या ली सब कूड़ा कर दिया। खुदा की कसम 4 रोज तस्वीर लगाई नहीं कि उनका प्रिंट ही उड़ने लगा। लोग कहते हैं पड़ोसी के साथ मुरव्वत करो, मिल तो गया नतीजा मुरव्वत का, आकर दुकान में ले लेना वो तस्वीरें। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
2: ये तो अच्छा अंजाम मिला मुफ्त तस्वीर खींचने का।
1: खैर क्या करना है, तरह तरह के लोग हैं। अच्छा मुक्ता जरा वो मेरा बैग तो लाना, कल बंबई से तुम्हारी बड़ी जीजी का पत्र आया है। है तो वो मेरी केयर ऑफ, मगर लिखा है पर्सनल, निकाल के पढ़ लो। और हाँ एक मैगजीन भी रखी है उसमें, लाना तो जरा।
2: अभी लाती हूँ।
1: पढ़ लिया पत्र, सब ठीक ठाक तो है ना?
2: हाय ये तो गजब हो गया, जरा वो मैगजीन तो खोलना, पेज 19।
1: क्या बात हुई?
2: अरे उस पत्रिका में कवि रसराज ने वो तस्वीर छपवा दी जो मेरे साथ ली थी उसने।
1: सच?
2: हाँ हाँ देखो तो सही।
1: ये तो रहा पेज 19 है, रसराज की कविता छपी है इसमें मिलन वेला। ठीक वही फोटो, नीचे छपा है कवि जीवन संगनी के साथ।
2: और ये पत्र पढ़ो, जी जी क्या लिखती है।
1: प्रिय मुक्ता तुमने जो गलत कदम उठाया उसके लिए हम लोग

0: आज वो बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भला मणिशंकर में क्या गुण था? मणिशंकर अगर तुम्हारे पास मेरा ये पत्र पहुंचा दे तो फौरन उत्तर दो कि क्या मामला है। मैंने पिताजी से भी इस बारे में सही खबर देने को कहा है, उन्हें तो बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मैगजीन के प्रति भेज रही हूँ जिसमें तुम्हारे कवि पति के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी है। अरे राम राम राम, इस रसराज ने तो बार डाला हमें। देखो तो सही कौन आया है मुक्ता।
1: अजी क्या हुआ उन तस्वीरों का मणिशंकर जी?
2: वो बात यह है गुरु घंटाल जी, वो बात यह है कि तस्वीरें तो 15-20 हैं और उनकी धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
1: दिल में कालापन क्यों रखते हैं साहब? उस रोज तो फ्लैश लाइट का रोना रोते रहे। मकान में जब आए थे तो कहा था भाई बनकर रहूंगा और अब बच्चों के लिए 10-5 का भी मुंह देखने लगे।
0: अजी हर महीने एडवांस किराया देता हूँ, इतना ताप क्यों सहूं?
1: तो मत सहिए ताप, बड़े मातवर है तो मकान खाली कर दीजिए। जब मकान मेरे पास तो बहुत किरायेदार मिलेंगे। मकान किराए पर क्या दिया था? कोई पगड़ी नहीं ली थी। मुझे ऐसा जुबानी भाई नहीं चाहिए। कब करते हैं मकान खाली?
0: बस जितनी जल्दी होगा।
1: तो बस जल्दी करें, मैं टू लेट की प्लेट टांगने जा रहा हूँ। जयराम जी की।
0: जयराम जी की।
3: ओफो, तुम तो बुरे फंसे कैमरा लेकर। अच्छा मैंने तुम्हें रात बतलाया नहीं?
0: क्या
3: वो पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाईलाल, उलाहना देने आए थे। फोटोग्राफी नहीं खाक जानते हैं। राधा भी तस्वीर में गोरी आ गई और कृष्ण भी गोरा आ गया। बेटी तो उनकी एक आंख से कानी है, कहने लगे ज्यों की त्यों तस्वीर उतार कर बच्ची का मजाक उड़ाया है।
0: हे भगवान, कहां से ये कैमरा खरीद लिया मैंने?
3: और अपने कवि मित्र रसराज से नहीं पूछोगे कि ये कांड क्यों किया?
0: उसकी याद मत दिलाओ मुक्ता, ऐसे नादान दोस्तों को मुंह नहीं लगाऊंगा कभी। अच्छा अभी चलता हूँ बाहर, एक मित्र के मकान का आधा हिस्सा खाली पड़ा है, तुम तब तक सामान संभालो, मैं चला।
3: और गुरु घंटाल जी तो?
2: मुक्ता भाभी माफ कर दो, इस कवि देवर को माफ कर दो। संपादक ने कविता के साथ छपने के लिए मेरी तस्वीर मांगी थी, मेरे पास अलग से अपनी कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ वाली तस्वीर भेज दी और संपादक को यह बतलाना भूल गया कि महिला का चित्र बचाकर काट ले तब छापे।
3: मगर हद हो गई कवि जी, मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है।
2: जो भी हो माफ कर दो भाभी, मैं तो शर्म से दुबला होता जा रहा हूँ। गम में आज दाढ़ी बनाई तो क्रीम नहीं लगाई, देखो आंखों में सुरमा तक नहीं डाला।
3: बस बस बस अभी भाग जाओ, कहीं वो आ गए तो।
0: चलो मुक्ता, ताना खड़ा है, सामान लगवाओ। कम वक्त कैमरे को भी बेच आया, उसके साथ जहां जाते के शोर होता, पड़ोसी के पास कैमरा है।

अभी आप सुन रहे थे हिमांशु श्रीवास्तव का लिखा प्रहसन पड़ोसी का कैमरा। इसके निर्देशक थे भगवान साहू। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आपको याद दिला दें कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार रामलाल पर।

कल दोपहर 3 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। कल शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। कल रात 9:30 पर आज के फनकार कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और देश विदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। तो ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों के बारे में।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: सुनाएंगे।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए

लीजिए सुनिए अगला गीत, कविता कृष्णामूर्ति, करसन सरगतिया और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है महबूब, संगीतकार हैं इस्माइल दरबार, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है शिव हरी ने। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल, कविता कृष्णामूर्ति, के और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है नुसरत बद्र ने, तर्ज है इस्माइल दरबार की, फिल्म का नाम है देवदास।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: India's position on the Indus Waters Treaty.
5: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
3: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
4: India's development assistance.
5: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
3: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
6: Prime Minister will also be visiting.
7: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया

0: एशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्य

0: वा दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य

समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार हैं कैफी आजमी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है कैफ भोपाली, संगीतकार है गुलाम मोहम्मद, फिल्म का नाम है पाकीजा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं परवेज शमसी, धुन है सी रामचंद्र की, फिल्म का नाम है नौशेरवाने आदिल।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। अब 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है। वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो, जिस भूमिका को कुछ भी

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहम दिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

दिल का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती हैं, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। श्रोताओं, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार का रिले कुछ ही पलों में किया जाएगा।
1: दिल्ली केंद्र से समाचार रिले हो रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं। India's
1: development assistance. बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही समाचार